0: महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
2: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित

0: दिया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब लीजिए सुनिए देशभक्ति संगीत कार्यक्रम। देशभक्ति संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लक्ष्य फिल्म से एक देशभक्ति गीत। गायक स्वर है शंकर महादेवन, सोनू निगम और कुणाल का। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

शंकर महादेवन और सोनू निगम की आवाज़ में अभी आपने लक्ष्य फिल्म का ये देशभक्ति गीत सुना। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पसंद आपके कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए अपनी पसंद के फिल्मी गीत। सभी सुनने वालों को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम पसंद आपकी में। और ये कार्यक्रम में पहला पत्र हम शामिल कर रहे हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आया हुआ। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने ये पत्र लिखा है। मन फिल्म का गीत चाहा है तुझको सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और आप सब हैं धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से हैं छन्नूलाल, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं मन फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में। समीर के बोल हैं, संगीत है संजीव दर्शन का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। जी हाँ, अभी आपने प्यार झुकता नहीं इस फिल्म का ये गीत सुना, लता मंगेशकर जी और शब्बीर कुमार की युगल आवाज़ में। SH बिहारी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और इस गीत को सुनना चाहा था अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, दिव्यांश कुमार और वंशीलाल श्रीवास्तव ने। और ये श्रोता हैं ग्राम धुर्रा बांधा भाटपारा से प्रमोद साह, देव कुमार साह, नवीन कुमार साह, युवराज साह और हरि नारायण सिंह। कर्नाटक राज्य चिन्ना तिरुपति से प्रकाश, श्यामला, अश्विनी, आनंद और मानवित को भी हम इसी गीत में शामिल कर रहे हैं। और अब कार्यक्रम में अगला गीत दयावान फिल्म से, जिसकी फरमाइश आई है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर की तरफ से। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से हैं वलीउल्लाह, डब्लूउल्लाह, परवीन आसमा। बुलंदशहर से हैं बदरू वली, फर्जू वली और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और छाविंद्र कुमार। तो लीजिए सुनिए आप सब दयावान फिल्म में पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें। अजीज कैसी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अब पसंद आपके कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कलेर बिहार के श्रोताओं की फरमाइश को। सुहाना सफ़र फिल्म का गीत चूड़ियाँ बाजार से मंगवाई। जी हाँ, ये सुनना चाहा कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत प्रवीण, सदा फारजू, साहिल अरमान, मशकूर आलम, समा प्रवीण और बेबी अलीसा ने। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से हैं अकरम हुसैन, इशरत अकरम, रूबीना परवीन, अरहान, हमजा, तैमूर, हुमैरा, सुमैरा, अबीहा, शाहीन नाज, नूरी नाज, बच्चू और चीना। साथी हैं मुजम्मिल कोकिल बारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से फैसल सैख और नुजहत जहानाज, कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, ब्रह्मपुरा मनीगाछी से अच्छे लाल रॉय, पानू देवी, मुकेश कुमार रॉय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। तो आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं सुहाना सफ़र फिल्म के गीत से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुहाना सफ़र फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ हमारा आज का पसंद आपकी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अब दीजिए इजाज़त रागिनी को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल इंतजार कीजिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से ही प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज। राजद ने सुनी

0: अनिल कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी की। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज समेत उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आज हो सकती है बारिश। दक्षिण बिहार में मौसम गर्म रहेगा। और पटना के दिलीप कुमार तथा सीवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए की ओर से 9 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। वहीं महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। महागठबंधन की ओर से राजद के सुनील सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। भाजपा ने इस चुनाव के लिए भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव जबकि 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करते हुए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रवासी श्रमिक कल्याण एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर मधुबनी जिले में असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। जिले के खजौली थाना क्षेत्र के ठाहर गांव में हुए इस हमले में श्री प्रसाद सुरक्षित बाहर निकल आ गए। घटना के बाद श्री प्रसाद ने कलवाही थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना में शामिल सभी आरोपितों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
3: कुछ असामाजिक तत्वों ने उनसे अनुचित डिमांड करने लग गए वो लोग, और जब मंत्रीगण के द्वारा उनको समझाया गया तो वो वहां से उनके जाने की, जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो कुछ महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया और उसमें कुछ महिलाओं ने पत्थर चला दिया, जिससे कि माननीय मंत्री जी की जो गाड़ी थी उसके पीछे का शीशा फूट गया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को काफी सारा मिला है और जिस व्यक्ति ने कार्य किया है उसकी पुलिस ने पहचान कर ली है, और 2-4 महिलाएं ने आगे किया था उसकी भी पहचान पुलिस ने कर ली है, और छापेमारी के लिए विशेष टीम गठित है और सब पे कार्रवाई करके FIR की जाएगी पुलिस के बयान पे।
0: इधर मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि यह घटना विपक्षी दल राजद के असामाजिक और उग्र कार्यकर्ताओं की सुनियोजित साजिश का परिणाम है। पटना के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिद्दुपुर को जोड़ने वाले 6-लेन पुल पर अगले माह से यातायात शुरू कर दिया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 पर बन रहे इस पुल की कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है। इसमें 9.76 किलोमीटर पुल और 10 किलोमीटर पहुंच पथ का निर्माण किया गया है। सचिव ने बताया कि इस पूरी परियोजना पर 4,988 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुल के आधे हिस्से पर यातायात पहले से जारी है। राज्य से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में लगे डिब्बों की अगले 1 सप्ताह के अंदर जांच की जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि दिल्ली श्री

0: माता वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन के एक स्लीपर कोच में कपलिंग टूटने की घटना के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत मुख्यालय, वर्कशॉप तथा मंडल के अधिकारी अत्यधिक खराब डिब्बों वाली रेलगाड़ियों की जांच कर उन्हें हटाएंगे। साथ ही पीरियोडिक ओवर हॉलिंग करने वाले सभी वर्कशॉप का अगले एक माह में ऑडिट किया जाएगा। राज्य के 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले राशन कार्डधारी परिवारों को उनके घरों तक जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनाज पहुंचाएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार पटना जिले के मसौढ़ी और वैशाली जिले के हाजीपुर में इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार राशन विक्रेताओं को प्रोत्साहन राशि देगी। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्शों पर खरा उतरते हुए आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग देश के विभिन्न भूभागों में हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों का प्रसारण करता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण बिहार में अगले दो दिनों तक गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। वहीं अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर मध्य तथा उत्तर पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
5: दिनांक 8 जून राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से प्री मानसून की गतिविधियों में तेजी आने के पूर्वानुमान है। इससे प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होने से गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा है, जहां का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर देश में कई परिवर्तन हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार की ओर से पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए

0: के कदमों पर पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु
3: पटना के दिलीप कुमार और सिवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं मुजफ्फरपुर के सुधांशु शेखर ने रजत पदक प्राप्त किया। पटना में खेली जा रही बिहार राज्य सब जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में पटना की ईशानी पाठक और मुजफ्फरपुर की नव्या गोयनका संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं। 10वीं दक्षिण एशिया आत्यापात्या चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता के बाद भारतीय टीम के सदस्य पटना के वैष्णवी और अरवल के दिवाकर कुमार का पटना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन राव भागवत अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान वे मुंगेर में आयोजित बिहार झारखंड के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में शामिल होंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में बिहार और झारखंड के 127 शिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। अररिया जिले में होटलों और अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, अस्पताल, निजी नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए जांच की। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में लोहागाड़ा इस्मत टोला में छापेमारी कर पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। दानापुर रेलवे सुरक्षा बल ने पटना के मीठापुर रेल लाइन के किनारे अतिक्रमण करने के मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के फुलवारी थाना क्षेत्र की पुलिस ने खगौल लक्ष्य से 10,000 के जाली नोट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की विशेष खबर है, यातायात पुलिस में 35 पार उम्र के सिपाही तैनात नहीं होंगे। दैनिक जागरण ने नीट पेपर लीक मामले पर शीर्षक दिया है, संसदीय समिति ने एनटीए से पूछा, उसकी परिभाषा में किसे माना जाए पेपर लीक। दैनिक भास्कर की खास खबर है, बिहार में नीली क्रांति का महाअभियान, बेकार पड़ी चौर की जमीन को तालाब बनाकर संवारेगी सरकार। प्रभात खबर लिखता है, स्कूलों और कॉलेजों में बिना हेलमेट वाले वाहनों की होगी नो एंट्री, जल्द ही शिक्षा विभाग जारी करेगा आदेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज। राजद ने सुनील कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी की। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज समेत उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आज हो सकती है बारिश, दक्षिण बिहार में मौसम रहेगा गर्म। पटना के दिलीप कुमार तथा सिवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: हर घर की वाणी।

आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभे खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। 9:06 हुए हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं आज हमारे सासाराम केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे गीत मालिका कार्यक्रम में कुछ हिंदी फिल्मी गीत। आज के फनकार आकाशवाणी विविध भारती से हम रिले करेंगे इस कार्यक्रम को 9:30 पर। सुबह 10 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले हिंदी समाचार हमारा स्वास्थ्य। ये साप्ताहिक कार्यक्रम आज आप सुनेंगे सुबह 10:05 से। लोक माधुरी कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा भोजपुरी एल्बम लोकगीत का 10:30 पर। और 10:45 पर आप सुनेंगे रसधार कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। पूर्वाह्न 11 आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से रंग तरंग। विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण हम लेकर आएंगे पूर्वाह्न 11 से अपराह्न 12 तक, अपराह्न 2:30 से शाम 5 तक, रात 9:30 से रात 10 तक।

शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत और 6:05 पर आकाशवाणी पटना से रिले किए जाने वाले भोजपुरी बुलेटिन समाचार को। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गांव घर हम लेकर आएंगे शाम 6:10 पर। सांझ गीत कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी फिल्म संगीत 6:40 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद 7:15 पर। गुड इवनिंग रोहतास 7:25 पर लिए चलेंगे आकाशवाणी पटना प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए। ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद आप सुनेंगे 7:50 से रात 8:45 तक। रात 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। रात 9 बजे हम लेकर आएंगे सासाराम केंद्र से लोकधारा कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी लोकगीत और 9:15 पर बंदगी कार्यक्रम में कुछ कव्वाली। रात 10 बजे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग और 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत। 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर। कार्यक्रम ब्यूरो में अभी आप संक्षिप्त जानकारी ले रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। गीत मालिका कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सभी सुनने वालों को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज 8 जून है और आज 8 जून को हमारी जो ये आकाशवाणी है ऑल इंडिया रेडियो इसकी 90वीं सालगिरह मनाई जा रही है। जी हाँ, इसने आज 90 वर्ष पूरे कर लिए। आपको बता दें कि आज की ही वो तारीख रही 8 जून को 1936 में जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। तो रेडियो के बारे में और भी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल आइए बजाते हैं रेडियो को। जी हाँ, सुनते हैं ट्यूबलाइट फिल्म से ये गीत रेडियो बजइयो, कमाल खान और अमित मिश्रा की युगल आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, प्रीतम चक्रवर्ती का संगीत।

श्रोताओं, आपको हम बता दें कि हिंदी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से, आकाशवाणी पटना से ही आप सुनेंगे इलाकाई खबरें 2:05 पर और रोजगार सूचना 2:10 पर। आकाशवाणी दिल्ली से मध्याह्न समाचार सुनिएगा दोपहर 2:15 पर। शाम 5 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। शाम 5:10 पर सुनिएगा वंदन कार्यक्रम में भक्ति संगीत। घर आंगन महिला बहनों का ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी सासाराम।

सजन रेडियो बजाइयो जरा। जी हाँ, आज के इस डिजिटल दौर में भी अगर हमें कुछ अच्छे गीत सुनने होते हैं तो आज भी हम रेडियो की तरफ ही मुड़ते हैं। और इस डिजिटल दौर में भी रेडियो ने अपने प्रसारण को बिल्कुल अनूठा और अच्छा बना के रखा हुआ है, और हमारे लिसनर्स जो हैं रेडियो के, उनमें भी बिल्कुल कमी नहीं आई है। देखते ही देखते किस तरह 90 वर्ष बीत गए पता ही नहीं चला। भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर, जी हाँ, आज ही के दिन 8 जून को 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। और देखते ही देखते रेडियो हमारी 90 वर्षों की हमसफ़र बन चुकी है। और आपको बता दें कि भारत का पहला रेडियो स्टेशन बॉम्बे रेडियो क्लब था, जिसने जून 1923 में देश में पहली बार अनौपचारिक प्रसारण शुरू किया था। इसके बाद 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे से देश का पहला आधिकारिक और नियमित रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। और 8 जून 1936 को इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दे दिया गया। और आकाशवाणी नाम जो ये पड़ा है वर्ष 1957 से आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा आकाशवाणी नाम दिया गया। और इसी के साथ और भी बातें हम आपसे समय समय पर साझा करेंगे, लेकिन आज के दिन तो आकाशवाणी के साथ हमारा सेलिब्रेशन बनता है। फिलहाल चलिए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में मेरे जीवन साथी फिल्म का एक गीत, मजरूह के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत है। और आपको बता दें कि ये जो गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में, उसे आकाशवाणी पर सबसे ज़्यादा बार बजाया गया। और इस गीत की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि जब भी हम सुनते हैं तो बस ऐसा लगता है कि इस गीत को सुनते रहें।

ओ मेरे दिल के चैन, किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का हमारा ये गीत मालिका कार्यक्रम आधारित है आकाशवाणी के 90 साल पूरा होने के सेलिब्रेशन की खुशी में। तो आपको बता दें कि आकाशवाणी, जो कि भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी आज भी 23 भाषाओं और सैकड़ों बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण में आज तक इसका ऐतिहासिक योगदान रहा है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इसका आदर्श वाक्य रहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और जो ये आकाशवाणी नामकरण पड़ा है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि 1957 में ये नाम पड़ा, तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने रेडियो को आकाशवाणी कहा था। और प्रसिद्ध कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर रेडियो को आकाशवाणी नाम के रूप में स्वीकार किया। संस्कृत में आकाशवाणी का अर्थ होता है आकाश से आने वाली वाणी, यानी दैवीय संदेश। तो और भी जानकारी हम देते रहेंगे आपको। और आज भी श्रोताओं, आम जनता जो हमारी है, वो सटीक और निष्पक्ष समाचार के लिए आकाशवाणी को ही फॉलो करती है। आज भी आकाशवाणी का मतलब है कि यहाँ पे खबरें बिल्कुल विश्वसनीय मिलेंगी, बिना किसी अफवाह के तुरंत मिलेंगी। और सच्ची घटनाएं जो होती हैं उसके बारे में आकाशवाणी आज भी प्रसार करता है। किसानों को मौसम का हाल जानना हो,

खेती की तकनीक के बारे में जानकारी लेनी हो या सरकारी योजनाओं की जानकारी लेनी हो तो वो सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं आकाशवाणी पर। आकाशवाणी आज भी मानक और शुद्ध हिंदी भाषा का ही प्रयोग करती है और जिससे भाषा ज्ञान भी बढ़ता है और अब तो यह डिजिटल भी हो गई है। न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप बिना इंटरनेट के मुफ्त में भी सुन सकते हैं और इंटरनेट पर तो ये है ही। कुल मिलाकर कहें तो आज भी सटीक और निष्पक्ष समाचार के साथ साथ आकाशवाणी शिक्षा, कृषि, मौसम की जानकारी, स्वस्थ, मनोरंजन, खेल, संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, नाटक जैसी चीज़ें उपलब्ध करा रही है और बेमिसाल है। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं, दो रास्ते फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और श्रोताओं, आपको अब अंत में सुनवाते हैं ऐ दिल है मुश्किल फिल्म से गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। जी हाँ, इस गीत को हमने इसलिए चुना क्योंकि बिल्कुल मुश्किल है हमारा भी गुजारा आकाशवाणी के बिना। और आपको बता दें कि आकाशवाणी जो है दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से एक है, जो भारत के लगभग 99% यानी कि 99% लोगों तक अपनी पहुँच बनाती है। तो बिल्कुल इसके बिना तो हमारा गुजारा है ही नहीं। तो लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग।

आज 8 जून 2026 को आकाशवाणी अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो इस 90वीं वर्षीय गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में आप सभी श्रोताओं को पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आकाशवाणी सासाराम, जुड़े रहिए हमसे। और अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र, जहाँ से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्ते, और आज की फनकार हैं खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा डिंपल कपाड़िया।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ?

0: पहले तुम।
1: पहले तुम।
2: हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। सबसे पहले तो ये कहना है कि आज है डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे।

0: 8 जून सन 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल कापाड़िया को सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में हीरोइन का टाइटल रोल प्ले करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

जिस तरह रातों रात उन्हें शोहरत मिली, उसी तरह अचानक ही डिंपल ने इस चमक दमक और स्टारडम को नमस्ते कह दिया और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया।

राजेश खन्ना के साथ अपने वैवाहिक जीवन में डिंपल को दो बेटियां मिली, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन डिंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सका।

डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई न कोई फैसला तो करना ही था। स्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया। फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी कमबैक फिल्म आई सागर।

इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी उपस्थिति को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती से दर्ज किया और हर तरह की फिल्में स्वीकार करने लगी। यानी उस दौर में भी डिंपल ने अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन करने में कोई हिचकिचा

डिंपल को 1973 में बॉबी और 1985 में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और 1991 में फिल्म दृष्टि के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला। और फिर 1993 में डिंपल ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी सशक्त अभिनेत्री छिपी है। फिल्म आई रुदाली।

डिंपल की उल्लेखनीय फिल्में हैं क्रांतिवीर, गर्दिश, दिल आशना है, अजूबा, अर्जुन, आज की औरत, काश, जख्मी औरत, लावा, राम लखन।

0: डिंपल कपाड़िया ने हीरोइन के रूप में अपनी अदाकारी और अपनी खूबसूरती से जो जादू अपने दर्शकों पर चलाया उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 2009 से उन्होंने जो पारी शुरू की चरित्र अभिनेत्री के रूप में, वो भी कम दमदार नहीं है। लक बाय चांस, तुम मिलो तो सही, दबंग, पटियाला हाउस और कॉकटेल। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था डिंपल कपाड़िया पर। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो

0: गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत शुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जो दशकों से पीछे छूट गए थे। कोलकाता के जाधवपुर स्टेशन के पास कल रात अवैध फेरी वालों को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ गया। दरअसल वामपंथी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद केंद्रीय बलों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सृजन भट्टाचार्य समेत कई वामपंथी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो

0: का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य।

0: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य।
1: हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम में मैं हूं आप सभी का रेडियो साथी रवि भूषण। सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, आयुर्वेद शब्द से हम सभी वाकिफ हैं, इसे जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। साधारण भाषा में यदि हम कहें तो जीवन को ठीक प्रकार से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है, क्योंकि यह विज्ञान केवल रोगों की चिकित्सा या रोगों का ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि जीवन जीने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति कराता है। यह केवल बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन पर जोर देती है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे कि जीवन शैली में आयुर्वेद को कैसे अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। कोरोना काल में आयुर्वेद के महत्व से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इस दौरान आयुर्वेद ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आयुर्वेदिक काढ़ा ने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद की। इसी तरह कई गंभीर बीमारियों में भी आयुर्वेद का बेहतर असर देखा गया। कई गंभीर बीमारियों में यह बेजोड़ काम करता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की विशेषता क्या है, इन सभी विषयों की जानकारी हम लेंगे अपने आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर भुवनेश्वर सिंह से।
2: हमारे तरफ से भी सुनने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र की जनता को धन्यवाद है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि जीवन शैली में सेहत का क्या महत्व है, अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय पर आज जानकारी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को देंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद क्या है। कहा जाता है कि आयुर्वेद एक विज्ञान है जिसे साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: आयुर्वेद एक वेदों से निकला हुआ
1: जी
2: आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है और इसका अर्थ है आयु, आयु से जीवन और वेद से पद्धति। जो जीवन दर्शन है आयुर्वेद, जो है जीवन दर्शन है आयुर्वेद, जो है वो जीवन जीने की शैली के बारे में बताता है
1: जी।
2: कि जीवन को कैसे स्वस्थ रखें। जब तक जीवन स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा देश एक स्वस्थ देश नहीं हो सकता है
1: जी।
2: इसलिए आम लोगों को, हमारे देश के जितने व्यक्ति हैं, उनको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसमें आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, इसका बहुत ही महत्व है। साइंस ऑफ लाइफ है, जो आहार विहार को ठीक रखने से मनुष्य स्वस्थ रहता है
1: जी।
2: आयुर्वेद की उत्पत्ति हजारों साल पुराना है, 5000 वर्ष पुरानी यह पद्धति है। ब्रह्मा के द्वारा आयुर्वेद संहिता में आयुर्वेद का वर्णन मिलता है
1: जी।
2: यह सिंधु घाटी से इसको पाया गया है ना। इसके तीन दोष हैं, आयुर्वेद तीन दोषों पर आधारित है। मनुष्य के शरीर में तीन दोष हैं
1: जी,
2: वात, पित्त और कफ
1: जी।
2: तो इन तीन दोषों को ठीक रखने से, उसको बैलेंस बना के रखने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। इसके लिए हमको सामान्य और विशेष सिद्धांत पर निर्भर है
1: जी,
2: जो कि संतुलन पर आधारित है, जो भोजन एवं आहार विहार पर निर्भर है। स्वस्थ रहने के लिए, आयुर्वेद को अपनाने के लिए स्वस्थ भोजन, स्वस्थ भोजन का मतलब है कि जो मनुष्य जिस तरह का भोजन उसके शरीर में चाहिए उस तरह का देना चाहिए
1: जी।
2: जैसे मान लीजिए कोई बहुत शरीर दुबला पतला आदमी है, उसके उस तरह का भोजन देना चाहिए। बहुत जिसको रिकेट्स कहते हैं, सूखापन कहते हैं, या एलर्जी टाइप का, मतलब उनको सर्दी खांसी हमेशा होती रहती है, तो उस तरह का भोजन उनको देना चाहिए। तो इसमें वात, पित्त, कफ, हमारे तीन दोषों को समझना होगा। वात वाले को भोजन जो है ग्रिस्ट टाइप का या बहुत बलयुक्त भोजन नहीं देना है। कफ वाले को कफ तरह का भोजन नहीं देना है, जैसे दही हुआ, ये सब चीज़ें नहीं देना है। और पित्त वाले जो हैं उनको खट्टा, तीता और मसाला वाली चीज़ों को नहीं देना चाहिए। इस तरह से संतुलित भोजन से सेहत ठीक रहेगा
1: जी।
2: सेहत का मतलब है शरीर ठीक रहना। शरीर कब ठीक रहेगा? जब इस शरीर से आप काम लेंगे। 80% बीमारियां हमारी जो हैं शरीर को ठीक से काम करने से ठीक रहती हैं। बाकी 20 तरह की बीमारियां जो इन्फेक्टेड हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, उसके लिए अंग्रेजी दवाओं का हम सहारा ले सकते हैं
1: जी।

0: बाकी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जो दवाइयाँ हैं उसके सेवन से 80% बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी
1: जी।
0: ये शरीर जो है हमारा, इसमें 70% जल है। इसका हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए कि जल वायु का प्रयोग जो है, वायु वो माने शुद्ध होना चाहिए
1: जी।
0: जल भी शुद्ध होना चाहिए। इस तरह का प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हमको जहाँ पर रहते हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ का अगल बगल का जो जगह हो, हमारे शरीर के लिए स्वस्थ हो
1: जी। डॉक्टर भुवनेश्वर सिंह जी, आयुर्वेद का महत्व स्वास्थ्य के लिए कितना है?
0: आयुर्वेद शरीर को स्वस्थ रखता है
1: जी,
0: ठीक रखता है। इसका वात पित्त कफ तीन दोषों पर आधारित है
1: जी।
0: अगर वात पित्त कफ सामान्य अवस्था में रहेंगे तो किसी प्रकार का शरीर में बीमारी नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेद मतानुसार उसी प्रकार का खान पान रहन सहन रखना चाहिए जो कि वात पित्त कफ को ठीक रख सके
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है यह कितनी पुरानी पद्धति है?
0: आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 5000 वर्ष पुरानी है
1: जी।
0: हमारे ग्रंथों में सुश्रुत बागभट चरक संहिता में इसका जिक्र आता है कि ब्रह्मा जी ने ही आयुर्वेद का ज्ञान ऋषि मुनियों को दिया
1: जी।
0: और उन्हीं के द्वारा ग्रहण करके सुश्रुत चरक बागभट जैसे आयुर्वेद के बहुत बड़े चिकित्सक हुए
1: जी।
0: यह देश जड़ी बूटियों से भरा हुआ है जो हमारे पुराने से पुराने जटिल रोगों को दूर करने की क्षमता रखते हैं
1: जी।
0: तो आयुर्वेद अनंत है ना, इसका बहुत पुराना काल, प्राचीन काल से संबंध बना हुआ है।
1: डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है यह किस तरह अन्य चिकित्सा पद्धति से अलग है? क्या जिस तरह से अन्य चिकित्सा पद्धति की दवाइयों का असर शरीर पर पड़ता है जिसे हम साइड इफेक्ट बोलते हैं, क्या इसमें भी इस तरह की बातें हैं?
0: आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का अपना अलग ही इस पद्धति का विशेषता है
1: जी।
0: ये हमारे शरीर के दोषों के आधार पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति द्वारा शरीर का इलाज किया जाता
1: जी।
0: है। इसमें विशेषता जो हमने बात पहले भी बताई है कि वात पित्त कफ दोष हैं, वात से करीब 563 बीमारियां हैं, कफ से 200, पित्त से करीब 250 बीमारियां हैं जो अलग अलग दोषों से इनके द्वारा विकृत होकर के शरीर में इसकी उत्पत्ति हो जाती है
1: जी।
0: दूसरे पत्ति में वो अपना बैक्टीरिया या पैथोलॉजी के द्वारा उसका निदान कर करके चिकित्सा करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ उस तरह की बात नहीं है। हम लोग दोष के द्वारा इसका निराकरण करते हैं। किस स्थान पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दोष की उत्पत्ति होती है तो वहाँ के वायुमंडल, वहाँ का वातावरण पर ये निर्भर करता है। तो आयुर्वेद उस तरह के वातावरण, उस तरह के जो वहाँ का विकृति पाई जाती है उसको हमारे यहाँ जड़ी बूटियों से उसका इलाज कर करके ठीक किया जाता है। हमारे यहाँ चूर्ण का व्यवहार है, बटी का व्यवहार है, आसवरिश काढ़ा के रूप में पिलाने के लिए इसको देते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में आयुर्वेद ने बहुत अच्छा काम किया
1: जी।
0: कोरोना को ठीक करने में ये देश को काफ़ी मदद किया। तो ये अलग पद्धति है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह जीवनीय तत्व है
1: जी।
0: यह जीवन को जीवित करता है और ये रसायन है। मरे हुए को जो बुढ़ापा है, जरा है, जैसे टीबी के बीमारी हुए, कुष्ठ रोग के बीमारी हुए, जो जर्जर हो गए, उनको भी ये शुद्धिकरण करके औषधि द्वारा, खान पान के द्वारा वो निरोग हो जाते हैं, उनका रोग जो है ठीक हो जाता है। आज हमारे देश में अस्थि भंज, अस्थि रोग का बहुत ही तेजी से प्रकोप हो रहा है
1: जी।
0: 50-60 साल से ही लोग, उनकी हड्डियां कमजोर हो जा रही हैं, उनको अधिकतर 60 वर्ष की उम्र में लोगों को फ्रैक्चर हो जा रहा है। ये खान पान और अपना अच्छा सेहत ठीक से नहीं रखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद चिकित्सा से के अलावे ये भी अष्टांग हृदय में सिखाता है
1: जी।
0: कि योग प्राणायाम व्यायाम करके आप अपने हड्डी को, शरीर के नसों को, स्नायु को, सभी को आप मजबूत कर सकते हैं
1: जी।
0: इसलिए आयुर्वेद की बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जो कि हड्डी को मजबूत करते हैं। एक्सरसाइज व्यायाम आदि से भी शरीर तुरंत रहता है। वेद बतलाता

0: है कि शरीर से जितना ही काम लेंगे उतना ही ये शरीर को ठीक रखेगा
1: जी।
0: लेकिन आज हमारे यहाँ तीन तरह का गुण है, जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण।
1: जी,
0: सतोगुण वाला व्यक्ति जो हैं वो अच्छे व्यवहार के होते हैं, उनका विचार और शरीर स्वस्थ रहता है। रजोगुण वाले होते हैं, थोड़ा आयासी होते हैं, अपने मन से अपना चलते हैं, अहम रखते हैं
1: जी।
0: और तमोगुण वाले व्यक्ति जो हैं ईर्ष्यालु होते हैं, किसी को मतलब उनको दया भावना की इच्छा नहीं रहती है। ये हमारे गीता में भी लिखा गया है कि ये जो राजसी, तामसी, ये जो गुण हैं, इसको का दोषों का निवारण करना चाहिए। जैसे तमोगुण वाले व्यक्ति हैं, आयुर्वेद भी बताता है कि ऐसे लोगों को दूध, दही, घी खिला करके उनके तमोगुण की जो है उसको शांति किया जा सकता है
1: जी।
0: तो हमें अपने शरीर के इन रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण पर विशेष ध्यान देना होगा और उस प्रकृति से जो बीमारियां होती हैं तो उस प्रकार का भोजन खिलाने से, रहन सहन अच्छा रखने से
1: जी।
0: ये सारे दोष जो हैं मुक्त हो जाते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है
1: जी।
0: जिस तरह से घर को सुंदर बना के रखते हैं, अपने गाड़ी को सुंदर बना के रखते हैं, उसी घर में हम रहते हैं
1: जी।
0: लेकिन जो मेरा घर है ये शरीर है, जब तक शरीर को ठीक नहीं रख सकते तो वैसा घर, वैसा गाड़ी अच्छा महसूस शरीर को नहीं होगा
1: जी।
0: इसलिए अपने शरीर को साल में एक या दो बार अवश्य जांच करावें, है ना, कि हम किस तरह के हमको औषधि का सेवन करना चाहिए, किस तरह का भोजन का प्रयोग करना चाहिए, जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए
1: जी।
0: भारत सरकार भी अब बहुत विशेष ध्यान देने जा रही है कि लोगों को डाइट चार्ट बनाया जाए, भारत सरकार द्वारा डाइट की, छोटे बच्चे से लेकर दो बच्चों साल के बच्चों का एक अलग डाइट चार्ट हो, दो बरस से 60 वर्ष के लोगों का एक अलग डाइट चार्ट हो और 60 वर्ष से ऊपर वालों का एक अलग चार्ट। पहले के लोग 80-90 वर्ष तक जिंदा रहते थे क्योंकि उनका खान पान बहुत शुद्ध था। हमारे भोजन की जो थाली पहले के लोग खाते थे, रोटी हुआ, दाल हुआ, दही हुआ, दूध हुआ, काफ़ी प्रोटीनियस युक्त इसमें भोजन है जिससे लोग बहुत दिनों तक स्वस्थ रहते थे और बार बार नहीं खाते थे, दिन में दो बार खाते थे। और जब शरीर, जब भोजन आपका मांगता है, जब भूख लगती है तभी शरीर को भोजन देना चाहिए। और आज का जो समय है, आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, इसमें पिज्जा, बर्गर और चटकदार फूड अधिक आ गया है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अहितकर है
1: जी।
0: पिज्जा आदि से अच्छा है कि हम सेब, नाशपाती, अंगूर, केला, इन सब चीज़ों को आदत लगाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे परिवार में इस तरह का भोजन हो जो कि शरीर को तंदुरुस्त रखेगा, मजबूत रखेगा, काम करने की शक्ति अधिक और जीवंत जीवन रहेगा। इन सारी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा आयुर्वेद तीन ऋतुएं हैं, जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। इन ऋतुओं में भी बताता है कि किस तरह का भोजन, किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए, तो उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि हम ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैसा इस पर खर्च करते हैं, लेकिन नहीं, शरीर में जिस ऋतु में जैसा कपड़ा पहनना है वैसा ही कपड़ा पहने, वैसा ही भोजन करें जिससे हमारा जीवन 80-90 वर्ष तक स्वस्थ रहे, आयु रहे और मनुष्य अपना कार्यकाल जो है, कर्म है, उसको अच्छे ढंग से बुरी आदतों से प्रभावित नहीं होने दे।
2: जिन श्रोताओं ने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में आयुर्वेद का क्या महत्व है। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, उससे पहले आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आशा से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द है आनंद बख्शी साहब के।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में सुना फिल्म आशा का यह बेहतरीन गीत। अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, चलिए बातचीत के क्रम को गति देते हैं। जैसा कि बातचीत के क्रम में पूर्व में आपने बताया कि आयुर्वेद में तीन तरह के ऋतु होते हैं, लोग छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी, इससे भी लोग ग्रसित होते हैं, तो किस तरह से इन बीमारियों में आयुर्वेद को अपनाकर वो स्वस्थ रह सकते हैं, या जब मौसम बदलता है तो लोगों में इस तरह की परेशानियां होती है, एलर्जी की परेशानियां होती है, इसके बारे में आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बताएं।
1: हर ऋतु का अपना अलग महत्व है
0: जी,
1: जो जीवन को सुखद रखता है, लेकिन कुछ परेशानियां भी वो ऋतु लाता है, उसके लिए हमको सजग हो जाना चाहिए। इसमें आहार पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कफाजुक्त भोजन को त्याग देना चाहिए और प्रतिदिन सोंठ पीपर मरीच
0: जी
1: बराबर मात्रा में लेकर के उसका पाउडर बना लें। बच्चों को 1 ग्राम सुबह शाम दूध से दें और जो जुआ हैं या बुजुर्ग हैं वो 2 ग्राम सुबह शाम सुसुम पानी से लें और सुबह में सुसुम पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ करके पिएं। जो हमारे शरीर में विषाक्त होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो उसके द्वारा दूर हो जाएंगे। रात में सोने के समय जो व्यक्ति दूध पीते हैं, या सबको दूध पीना चाहिए, उसमें 1 कप दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर प्रतिदिन पिएं।
0: डॉक्टर भुवनेश्वर सिंह जी, एक आम आदमी अपने जीवन शैली में आयुर्वेद को किस तरह शामिल कर स्वस्थ रह सकता है, इसके बारे में हमारे सुनने वाले श्रोताओं को विस्तार से बताइए। एक्सरसाइज वगैरह का, प्राणायाम वगैरह, इसमें क्या महत्व है?
1: आयुर्वेद के द्वारा जीवन शैली में किस तरह से मनुष्य अपने सेहत को अच्छा बनाए रखे
0: जी,
1: उसके लिए प्रतिदिन सुबह में 4 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए, उसके बाद 1 कप पानी या 1 गिलास सुषुम पानी, उसमें 1 नींबू निचोड़ करके उसको धीरे धीरे पीना चाहिए, उसके बाद अपना शौच क्रिया से निवृत्त होकर के प्राणायाम करना। प्राणायाम में अनुलोम है, अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है, ये करना चाहिए। साथ ही व्यायाम भी करना चाहिए, जो एक्सरसाइज हैं उसको सुबह में करना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 2 या 3 किलोमीटर प्रतिदिन टहलना चाहिए
0: जी। बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि डॉक्टर भुवनेश्वर सिंह ने बताया कि दिनचर्या में हमें आयुर्वेद को रखना होगा, जो भी बीमारियां हैं हमें उनको खत्म करना होगा। आँख खुलते ही दवाइयां शुरू हो जाती हैं, हर छोटी मोटी बीमारियों में हम दवा का सेवन करने लगते हैं, इससे हमें बचना। श्रोताओं, जून का महीना है और मौसम में उतार चढ़ाव जारी है, कभी तापमान ज्यादा तो कभी कम। हालांकि मानसून का समय नजदीक है, लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन अभी जो स्थिति है इसमें अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शरीर को हाइड्रेटेड रखें, सूती कपड़े पहने और धूप में सीधे जाने से बचें, नींबू पानी का सेवन करें। घर में यदि बच्चे और बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। तपती जलती गर्मी के मौसम में हमारा शरीर तेजी के साथ डिहाइड्रेशन का शिकार होता है, वहीं लू और हीट वेव कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। ऐसे में अपनी दिनचर्या, पहनावा और खान पान में थोड़ा सा बदलाव कर हम इससे सहजता से बच सकते। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम का आज का यह अंक अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में नए विषय के साथ हम आप सबों से फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: हमारा स्वास्थ्य, ये साप्ताहिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी लोकगीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम में सबसे पहले मदन रॉय की आवाज़ में एक पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत, जिसकी धुन बनाई भरत शर्मा व्यास ने है और एल्बम है बलम गईले झरिया।

मदन रॉय के स्वर में अभी आपने सुना ये पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत। धुन एक बार फिर भरत शर्मा व्यास की थी और एल्बम था करी हम कौन बहाना। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और आप सुन रहे हैं लोक माधुरी कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में राजा पिया जानी, इस एल्बम का ये लोकगीत जिसे लिखा डॉक्टर राम रक्षा मिश्रा ने है और संगीत एक बार फिर भर शर्मा व्यास का।

भारत शर्मा व्यास के गाए हुए इसी भोजपुरी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का यह लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी

में पूर्वाह्न के 10:45 हो रहे हैं। रसधार कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। रसधार कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पवन सिंह की आवाज़ में लुट गए एल्बम से लिया गया ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग, जिसे लिखा मनोज मुंतशिर ने है और संगीत है तनिष्क बागची का।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

हम लुटा देव जान। इस एल्बम में अभी आपने सुना पंकज निराला और साथियों के स्वर में ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग, जिसे लिखा शशि भूषण सिंह ने था और संगीतकार थे अरशद जमाल। अरशद जमाल का ही संगीत है और गीत एक बार फिर शशि भूषण सिंह का। आवाज़ इस बार राजा सिन्हा और प्रिया सिन्हा की है। एल्बम हम लुटा देव जान।

राजा सिन्हा और प्रिया सिन्हा की युगल आवाज में अभी आपने सुना हम लुटा देव जान इस एल्बम का ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। और अब इसी के साथ हमारा आज का रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। श्रोताओं, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण, जिसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले करेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, जुड़े रहिए हमसे। और अब रागिनी को प्रातःकालीन सभा से अनुमति दीजिए। नमस्कार, आप सभी का दिन

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गजल। शायर हैं राजेश रेड्डी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजें इन्हीं का संगीत। शब्दकार आर एस हरियाणवी रतन। एल्बम का नाम तस्वीर।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। यूफोरिया की आवाज पलाश और दीक्षांत का लिखा हुआ गाना, संगीत पलाश और डीजे का।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। कमाल खान की आवाज, संगीत साजिद वाजिद का एल्बम कल रात।

0: लोगों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। धड़कन फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के बाद।

फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में रानी मलिक का लिखा हुआ गाना। हमने आपको बताया कि आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के शुरुआती कुछ गाने उन्हीं की फिल्मों से लिए गए हैं।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। ये है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब आपको सुनवाते हैं लेकिन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। बंटवारा फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। हसन कमाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आज की इबारत जो है वो आपको बता देते हैं। खारे पानी का विशाल जलाशय, दूर से देखो तो मन मोहने वाला नीला रंग दिखाई देता है, जो पृथ्वी की जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे तापमान को नियंत्रित करते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे जीव इसमें पलते हैं। परिवहन, व्यापार और वाणिज्य के लिए भी ये आवश्यक है। भोजन, ऊर्जा और खनिजों के स्रोत हैं। बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ये। रहस्य और रोमांच से भरी लहरें इसकी रेतीली जमीन पर टकराती है, आवेग से आती है और टूट जाती है। जाते हुए अनूठी सौगातें हमें दे जाती है, जैसे सीप, शंख, मोती। शाम होती है, सैलानी चले जाते हैं, पर वे अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। उसका दिल तो देखिए, सबको अपने में आत्मसात कर लेता है। प्रकृति का अटूट समर्पण है ये। मन के भीतर भी लहराता है और बाहर भी अटखेलियां करता है। बताइए क्या है उसका नाम? जी हाँ, उसका नाम है सागर। आज वर्ल्ड ओशियन डे, ओशियंस डे यानी कि विश्व महासागर दिवस है, तो इसी अवसर पर आज हम बातें करेंगे सागर की, समंदर की। बहुत सारी चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं, इसलिए कुछ प्रश्न हैं हमारे, लेकिन वो प्रश्न हम आपसे कुछ देर के बाद पूछेंगे। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि ये धरा का वह अनंत आंचल है जिसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन है। इसका संगीत कभी लोरी की तरह शांत होता है तो कभी तूफान की तरह रौद्र रूप धारण कर लेता है। सूर्य की पहली किरण जब इसके सीने पर पड़ती है तो मानो सोने की चादर बिछ जाती है। वो इंसानों के लिए प्रदूषण को भी अपने भीतर समेट लेता है। ये बिना थके हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागता है। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि पृथ्वी का हृदय है। ये बादलों को जन्म देता है और नदियों को अपनी बाहों में समेट लेता है। इसके किनारे खड़े होकर हर इंसान इसकी विशालता में खो जाता है। जी हाँ, बात जब विशालता की आती है तो किसी भी चीज का आकलन हम करते हैं या फिर एक उसका कंपैरिजन जब करते हैं तो कहते हैं सागर की तरह। सागर की तरह गहरी आंखें, सागर की तरह गहरा दिल, सागर के जैसा गहरा प्यार। और भी बहुत जगह जहां पर हमें बहुत गहराई दिखानी होती है तो हम उसकी उपमा सागर से करते हैं। ऐसी और कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी बातें हैं जब हम कहते हैं कि ये तो सागर जैसा है? जी बताइएगा हमें। सबसे पहले आपको सीमा फिल्म का गाना सुनवाते हैं। शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, नूतन और बलराज साहनी पर फिल्माया गया गाना है। आवाज किसकी है आप हमें बताइए।

मन्ना डे की आवाज़ में सीमा फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि सागर महासागर के कई ऊंच नीच लहरों में छिपी अनगिनत यादों को, मन की भावनाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। मिटने वाली सभी निशानियों का कभी अंत नहीं, सूरज को अपने भीतर समाने वाला सागर अथांग तीर में बंदिस्त होकर भी सभी नदियों का पानी पीकर सीमा नहीं छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, अपनी सीमाओं से वो बंधा होता है। एक हमारे ये लिख रहे हैं कि समंदर शोर भी करता है और सुकून भी देता है, ऊपर से नीला शांत और अंदर मूंगा मोती तूफान सब छुपाए बैठा है। समंदर की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी। वो बना तो बूंद बूंद से है पर बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो देता है। फिर भी न छोटा होने का गम और न बड़ा होने का घमंड, वो हजारों नदियों का दर्द पीकर भी गमगीन नहीं होता। इसलिए अक्सर टूटे हुए लोग समंदर के किनारे जाते हैं और उससे सीखते हैं कि दर्द पीकर भी कैसे मुकम्मल रहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बारूद फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। इसमें जो आवाज है वो लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। ये कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

मेरी हद है कहाँ तक। जी हाँ, इस बात को हमें याद जरूर रखना चाहिए कि हमारी हदें कहाँ तक है। सागर के किनारे हम जाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, आनंद लेते हैं पानी के आने और जाने का, लहरों का आनंद लेते हैं, वहाँ की जो ठंडक होती है उसको महसूस करते हैं। दूर तक दिखता हुआ सागर, जहाँ उसका कोई किनारा नहीं दिखता है, सूरज डूबता रहता है, वो जो मंजर होता है बहुत खूबसूरत होता है। क्या हमें इस खूबसूरती को बरकरार नहीं रखना चाहिए? ये प्रश्न अभी हमारे सामने है। जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, बहुत सारी गंदगी फैला करके आते हैं, उसे गंदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी हदें हैं। तो इस बात को बताता हुआ ये गाना आपने सुना। मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर और शोमा आनंद पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समंदर सिर्फ पानी का विशाल संग्रह नहीं, बल्कि भावनाओं का आईना है। उसकी खामोशी में भी एक शोर महफिल है, इसकी हर लहर में एक रहस्य छुपा हुआ है, तो गहराइयों में दबी है एक असीम दुनिया, सदियों से बहता फिर भी ताजा लगता है। उसकी गहराइयों में कितने रहस्य दफन हैं, उसके हर मोती में कितने ख्वाब छुपे हैं। समंदर की शरण में जिंदगी मुस्कुराती है, उसकी विस्तृतता में एक आजादी का एहसास है। देखने में अथाह और शक्तिशाली समंदर, फिर भी कितना बेबस है। यह बेबसी इंसानी फितरत और भावनाओं से भी मेल खाती है, जहां हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खास चीजों के लिए लाचार होते हैं। अब आपको हम आगे जो गीत सुनवाने वाले हैं, ये झुक गया आसमान इस फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, राजेंद्र कुमार और सायरा बानू पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि आज की इबारत में विशाल अनंत कभी शांत चित्त तो कभी विकराल रौद्र रूप सिंधु की महिमा बखान है, कभी अटखेलियां करती लहरों और ज्वार भाटा से पर्यटकों को आनंदित करती है तो कभी पर्यावरण असंतुलन से असंतुष्टि का प्रदर्शन अपने रौद्र रूप चक्रवातों और सुनामी से करती है। समंदर मानव कल्याण के लिए खनिज, जीव जंतु, संचार, परिवहन, देश सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ भी है। अनेकों रहस्यों को समेटे सिंधु आज भी दहाड़ते हुए आकर्षण की प्रधानता स्वयं प्रमाणित करती है। सागर की लहरों संग का मनोरंजक सफर का हमें इंतजार है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज बातें होंगी समुद्र की, जिसे हम सागर, जलधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव आदि नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका है, जिसमें महासागरों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। ये सूर्य की हानिकारक और तीव्र गर्मी को सोखकर वैश्विक तापमान को संतुलित रखता है। अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली, अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ से जावेद अख्तर के बोल संगीत आरडी बर्मन का।

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है। सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं, बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है, उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएं हैं। उसकी

लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप, शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा, प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों, असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवंत दर्पण में अनगिनत कहानियां, रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाहन कौन सा है आप हमें बताइए।

अनोखी रात फिल्म का ये गाना संजीव कुमार पर फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है। ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र

केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है। इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है, इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप, शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है, जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जी जयकिशन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है, आप बताइए हमें।

अभिनेत्री वैजयंती माला ये गीत गा रही हैं फिल्म में जो हमें दिखाई देता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकराकर लौट तो जाती है लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प

कल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे जरूरी बात है कि ऐसी ऐसी चीजों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहाँ पर फेंक करके ना जाएं, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहाँ आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीज़ों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज़, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है जो एक संदेश देती है मनुष्य।

के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें, मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबां पर बस प्रकृति का साज, शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है, हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है, सीप की खामोशी में मोती का जन्म होता है, दर्द सहकर भी जीवन अनुपम कर्म होता है, मन के वेग को थाम लेती है ये लहरें, जैसे माँ की गोद में सो जाए सारी दहशतें। समुद्र कहता है बहते रहो, ठहरना मत, सपनों की राह में कभी बिखरना मत, प्रकृति का अटूट समर्पण यही कहता है, जो प्रेम में डूबा हो वही मोती बन पाता है। धन्यवाद आपका। और अब प्यार का सागर, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। आशा भोसले और मुकेश की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें।

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे हैं तो वहां से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी, हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो, और हर आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे और हमारी

बातें अधूरी रह गई, हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती है, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुंचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ और साथ में कुछ और भी आवाज़ें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और ईला देसाई की इसमें आवाज़ें हैं और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का 16 श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मन

मोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिखने की महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपनी सुंदरता शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना SP बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आजमी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज़ किसकी है बताइए हमें।

जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। एनडीए के 9 जबकि महागठबंधन के एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन भरा है। भाजपा की ओर से भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने अपना नामांकन भरा। वहीं जदयू की ओर से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने नामांकन पर्चा भरा। एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इधर राजद प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार के 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश में कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल माध्यमों से लोगों तक सीधे और पारदर्शी ढंग से सहायता पहुंच रही है। इससे लक्षित वर्ग तक अधिकतम लाभ पहुंचना सुनिश्चित हुआ है, कार्य क्षमता बढ़ी है और शासन में भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अगले दो दिनों तक गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। वहीं अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर मध्य तथा उत्तर पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम चंपारण जिले के बलथर और भंगहा क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार पर लदे 111 क्विंटल से अधिक गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत देव मोड़ के पास एक पर्यटक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 3 पर्यटकों की मौत हो गई, वहीं 20 अन्य पर्यटक घायल हो गए। घायलों में 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। रोहतास जिले में नोखा थाना क्षेत्र अंतर्गत 70 बिगहवा गांव के पास एक ऑटो और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। कानून साज काउंसिल की 9 सीटों के लिए होने वाले 2 साला इंतखाब और 1 सीट के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए आज नामजदगी का आखिरी दिन है। एनडीए के 9 जबकि अजीम इत्तेहाद के 1 उम्मीदवार ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। बीजेपी की जानिब से भोजपुरी अदाकार और गुलकार पवन सिंह, संजय म्यूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वहीं जेडीयू की जानिब से वजीर सेहत निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जानिब से कारगुजार रियासती सदर अशरफ अंसारी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। एनडीए उम्मीदवारों की नामजदगी में वजीर आला सम्राट चौधरी, लोजपा आर के सरबराह चिराग पासवान समेत एनडीए के कई सीनियर लीडरान शामिल हुए। इधर आरजेडी उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून है। जरूरत होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को पोलिंग होगी और इसी दिन शाम में वोटों की गिनती होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों के मफाद में हुकूमत के 12 बरसों के तरक्याती सफर की निशानदेही की है। जनाब मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान मुल्क कई तब्दीलियों का गवाह बना।

और गरीब फलाह और महरूम तबके इन तब्दीलियों के फोकल प्वाइंट रहे। वजीर आजम ने कहा कि जन धन खाता, बराह रास्त फायदे के मुंतकली, शफाफ भारत मुहिम, पीएम रहाइश मंसूबा, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का मकसद लोगों के लिए इज्जत वक़ार और मौके को यकीनी बनाना रहा। गरीबों की तर्ज जिंदगी बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम किरदार निभाया है। उन्होंने कहा कि बराह रास्त फायदे की मुंतकली और डिजिटल जराये से लोगों तक सीधे और शफाफ तरीके से इमदाद पहुंच रही है। इससे निशानजद तबके तक ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचने को यकीनी बनाया गया है। काम करने की सलाहियत में इजाफा और हुक्मरानी में एतमाद बढ़ा है। वजीर आजम ने कहा कि गरीब फलाह यात्रा लोगों की इस्तेहकामकारी और तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने की इज्तमाई मुहिम बन गई है। मुल्क का काबिल एतमाद पब्लिक ब्रॉडकास्टर आकाशवाणी आज अपने 90 बरस मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफती, इत्तलाती और नशरियाती तारीख में एक खास लम्हा है। पार्लियामानी और अकलियती उमूर के

0: मुल्क का काबिल एतमाद पब्लिक ब्रॉडकास्टर आकाशवाणी आज अपने 90 बरस मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफती, इत्तलाआती और नशरियाती तारीख में एक खास लम्हा है। पार्लियामानी और अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के फखरिया 90 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी है। रियासत के जनूबी खित्ते में आइंदा 2 दिनों तक गर्म और उमस भरा दिन रहने का इम्कान है। वहीं अगले 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। मौसम साइंस सेंटर पटना के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज समेत शुमाल वस्त और शुमाल मशरकी बिहार के कुछ मकामात पर हल्की से औसत दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर जिला का भभुआ रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मगरबी चंपारण जिला के बलथर और भंगहा इलाके में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार पर लदे 111 क्विंटल से जायद गांजा के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिला के रामनगर थाना इलाके में पुलिस ने ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 बैन रियासती ठग को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद जिला के मुफस्सिल थाना इलाके के तहत देव मोड़ के करीब एक टूरिस्ट बस और ट्रक के दरमियान जबरदस्त तसादुम में 3 सयाहों की मौत हो गई, जबकि 20 दिगर सयाह जख्मी हो गए। जख्मियों में 8 की हालत संगीन है। रोहतास जिले में नोखा थाना इलाके के तहत 70 बिगहवा गांव के करीब एक ऑटो और पिकअप गाड़ी की आमने सामने की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक ही खानदान के 3 दिगर अफराद संगीन तौर पर जख्मी हो गए। मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना इलाके से पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक के साथ 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जरायम पेशों के पास से 1 4-पहिया गाड़ी और 1.25 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। अररिया जिला के आरिस थाना इलाके से पुलिस ने गाड़ी जांच के दौरान 1 4-पहिया गाड़ी से 228 लीटर बियर बरामद किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा हो या ओ लेवल, सी सी सी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

देखें, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी।

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं।

0: अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्त
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
0: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े

0: संशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने

0: एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय सेवा, देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आज और कल। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी। तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं,
1: क्या बात
0: जैसे
1: है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार
1: वो
0: था।
1: हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरेगी।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदे ने फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में है, बीडी मिश्रा ने लिखा है, एसएन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं
1: और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज

0: मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
1: बिल्कुल।
0: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए, हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी, वो अक्सर आप जहां पैर रखेंगे, दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा। तो ये सावधानी हमें
0: बिल्कुल
2: बताई थी।
0: ये कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है, वहां जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं और कहीं पर रेत धसकती है। और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहां पर हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है, इतना तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहाँ जा रहे हैं पहले वहाँ के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें, उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहाँ पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगी?
2: क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहाँ से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है पानी
0: और आपको वापस देता भी है,
2: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
0: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा। मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
2: संदेश देता
0: है। तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया, तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे, जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है। तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए, खाइए, पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में, पैकेट में, झोले में रख के ले आइए अपने घर में, आसपास जो आपका कचरा दान उसमें डालिए, या वहां पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए। वहां समुद्र के वातावरण को, उसके किनारे को, उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करिए, इसका ध्यान रखिए।
0: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खास तौर से एक बीच है, अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है, तो वहां पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहां पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें, बजाय ये लिखने की हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे। अब क्या करें, हम
2: अब गीत सुना दीजिए।
0: चलिए सुनते हैं गाना।

0: तो ममता जी, हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो वहाँ पे प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजें। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो हमने बता
0: ही दिया है, और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोलिए क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती, तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण इसका भाग दो।
1: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
3: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे।

0: वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया, वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
0: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे, सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे। किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष। पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही ना होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते, फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है।
4: रूप सुहाना लगता,
3: मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। साहब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
5: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
5: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मचमच,
5: तुमसे मतलब।
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
5: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सबसे कह दो, फिर किसी वक्त आए।
5: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
5: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसे ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
5: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
5: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
3: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
5: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
0: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जलीकटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहां है?
2: मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहां जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहां है, किस दशा में है।
0: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक

0: मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक,
1: जी
0: और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो
1: बिल्कुल
0: हमारे हाथ
1: बिल्कुल
0: में है,
1: सही कहा
0: कि
1: आपने
0: उसकी सुरक्षा
1: जी
0: साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहां पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं। और इससे
0: तेल मिलता है
1: हाँ तेल
0: जिससे, जो
1: जी
0: बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
1: बिल्कुल ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें, और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो
1: जी
0: चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के
1: बिल्कुल
0: किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को,
1: जी
0: लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की
1: तो
0: बात हमारी एक और सखी
1: जी
0: लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांध दी, और नूपुर बज उठते हैं, उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो
1: बहुत
0: हमारी
1: बड़ी अच्छी अच्छी
0: सखियां
1: बातें लिखी हुई
0: बड़ी
1: जी
0: ललित भाषा में
1: जी
0: ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: जी और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर है। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरते देखें तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है,
1: क्या बात
0: तो जब
1: है।
0: बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहां स्वच्छता साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप
0: तो
1: ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी। लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय हम प्रकृति के उन नजारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित

0: रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को, एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है, बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
1: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया। फिल्म बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले
0: अरे हमें। आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से
1: मतलब
0: ये तपाक से बोलना हुआ लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया
1: लेकिन
0: आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहां हमें बोलना नहीं चाहिए कहां बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूं। भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल।
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो। तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को बर्बाद करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए। पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है। इन्होंने ये बात लिख करके
0: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक

0: ने लिखा है कि जल्दबाजी, अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में। इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में ना काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए। तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए, एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है, लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी की पति
0: विश्लेषण किया है इन्होंने।
1: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती हैं। अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
0: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट
1: तपाक से
0: ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: ये क्या वजह है? हमें लगता है कि
1: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती हैं?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम
1: हमें
0: कल
1: आज ही कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से जी। तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
0: तो
1: खाते
0: ये
1: हैं।
0: रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
1: अभी तो
0: सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
1: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी।
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही हैं?
1: आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए, और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और 1 छोटा चम्मच अमचूर, और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए, और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना है उससे लोइया बनाइए, उसमें आलू का ब्रावन भरिए, और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
0: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
1: बिल्कुल ये टाली भी नहीं जाएगी।
0: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाए ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल, 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ, और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें, कढ़ाही में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
1: जी।
0: और अब ये गाना सुनें।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज़ थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बताएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ, और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक

0: होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है, कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
0: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वह किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
1: सी, डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, यह सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
0: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
1: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
0: ओहो,
1: इतना ज्यादा शुगर होता है।
0: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
1: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
0: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो, कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है, तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
1: नॉर्मली

0: अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी,
1: अच्छा
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत ज़रूरी है।
1: जी हाँ, वही देखिए, चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है। थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप।
0: श्रोताओं को मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: डर्मेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है, या बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज़ का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का इंडिकेटर है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट राय ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते
0: तो कभी कोई
1: हैं।
0: ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट राय ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज़ का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज़ ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है। तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं,
1: सही
0: पूरा
1: बात,
0: हिस्ट्री मालूम पड़ता है।
1: यस।
0: कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें जैसे कि मैंने कहा पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री

0: देते हैं हम पहले कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
1: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
0: राइट, पेशेंट्स
1: वो
0: को
1: दूर हो
0: बहुत
1: जाता है।
0: टेंशन होती है।
1: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
0: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे MD के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके। तो
0: हाँ
1: इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज़ की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज़ की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज़ इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है। तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस, डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज़ आ जाता है?
1: ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज़ हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज़ आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज़ होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज़ के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता है?
1: टाइप 1 डायबिटीज़ में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए, मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज़ है कि नहीं। पर अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन्स है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उसमें इंसुलिन इज़ द लास्ट ऑप्शन, बहुत बेहतरीन दवा।

0: यहाँ मार्केट में है एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ से के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
0: जी सही बात है, इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
1: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दौर्बल्यता आती है।
0: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
0: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स हैं जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दें, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो-खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूअसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशंस है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन मोटापा जिसे हम बोलते हैं वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है, उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को, तो तारे ज़मीं पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे ज़मीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज़ होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज़ होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज़ है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरेडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है।
1: डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो सभी बच्चों को डायबिटीज़ होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक

0: जैसे आपने कहा था स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं,
1: सही
0: तभी
1: बात,
0: इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली, मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी स्टडीज़ है जो बताती हैं कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर लो, बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो,
0: जी
1: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
0: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए।
1: जी, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर,
0: जी
1: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज़ जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोतीबिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं, इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है।
0: ओहो,
1: तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है, ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
0: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पत्तलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
1: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट, जैसे कि मैंने बताया न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में जख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये जख्म बढ़ता जाता है, और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फूड चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फूड इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए और फूड इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फूड है

0: इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें, तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं, या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज़ फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं पहने, और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: में जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम

0: डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूं कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के, उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीज़ें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज़्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज़ की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने की संभावना है।
1: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
0: यस
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री। तो व्हाट इज शुगर फ्री?
0: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकेरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है।
1: जी
0: स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए, ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं लें, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
1: आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुनें तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रमीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाया है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी।

0: जी, नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी नेता सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलोवन खेलते हुए दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान 112 रन ही बना सका। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 146 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर सुनिए बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन। रोज की तरह आज भी भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:05 पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार।

शाम 6:10 पर सुनिए ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत हम प्रस्तुत करेंगे शाम 6:40 पर। शाम 7 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास की प्रस्तुति होगी शाम 7:15 पर। शाम 7:25 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र और तब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद आप सुनेंगे शाम 7:50 पर। रात्रि 8:45 पर सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा की प्रस्तुति होगी रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदगी। 9:30 पर आपको हम सुनवाएंगे विविध भारती के प्रसारण जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग की प्रस्तुति होगी रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर। सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

ऐ श्याम मेरे एल्बम का ये भजन अभी आप सुन रहे थे ब्रज शर्वरी की आवाज़ में। और अब आइए भक्ति संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएं अनूप जलोटा की आवाज़ में ये भजन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन यहीं संपन्न हुआ।

एफएम एंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

मेरी सारी अजीज़ सखियों को अनीसा मानुसी का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम घर आंगन में। सखियों, गर्मी की सख्ती और धूप की तपिश से हम कमज़ोर और सुस्त पड़ते जा रहे हैं और ऐसे में हम सभी को अपना ख़ास ख्याल रखना होगा। बेवजह घर से बाहर ना निकलें और पानी भरपूर पिएं। शरबत, जूस और नींबू दही का इस्तेमाल जितना हो सके ज़्यादा करें। खाना सादा खाएं, क्योंकि आजकल शादी ब्याह का भी मौका चल रहा है और ऐसे में तो कुछ ख़ास किस्म की पार्टी होती है, तो पार्टी में इंजॉय ज़रूर करें लेकिन अपने हेल्थ को देख करके। और कपड़े भी सूती पहनने की कोशिश करें। स्वास्थ्य सही है तो सब सही। गर्मी में मिलने वाले फल और आइसक्रीम फालूदा का मज़ा आप बिल्कुल लें, इसे छोड़े नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का जो रंग है उसे बेरंग बिल्कुल ना होने दें। मौसम का मज़ा लें लेकिन सावधानी के साथ। मौसम का मज़ा हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम ऐसे खूबसूरत देश में रहते हैं जहाँ मौसम, पर्व त्यौहार, बहुत सारी ऐसी अनगिनत खूबियाँ हैं जिससे हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। चलिए, खूबसूरत बातों का ज़िक्र हो रहा है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत से।

सखियों, अपने कार्यक्रम के ज़रिया जब हम आपसे मिलते हैं तो आपके साथ होने का एहसास इतना खूबसूरत, इतना दिलचस्प होता है कि एक अनजानी खुशी और बहुत सारी बातें करने को जी मचल उठता है। और हमारी बातें हर तरह की होती हैं, उसमें मनोरंजन, जानकारी दोनों हम आपसे साझा करते हैं और यही हमें एक दूसरे के बहुत करीब लाते हैं।

हैं और अच्छी यादों का सबब भी बन जाते हैं। तो सखियों, हम कभी कभी दूसरों की सुनते हैं लेकिन कभी अपनी बातें कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो बातें दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी बातें करने में मज़ा आता है और हम एक दूसरे के करीब होते हैं। ये बहुत अहमियत रखता है। जब हम बातें करें तो अपनी बातें भी कह सकें और कहने का अंदाज़ खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले को समझ में आए, ताकि वो अपनी और आपकी बातों को अहमियत दे सके। तो चलिए, हम आपसे बातें बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन हम बीच में थोड़े जायके को भी बदलते रहेंगे। चलिए, हम एक मीठा सा प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ में।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गीतों की मिठास और सखियों से बातें, ये दोनों एक ऐसे व्यंजन हैं जो जायके को बहुत मज़ेदार बनाते हैं, हमारे प्रोग्राम की दिलकशी को बढ़ा देते हैं। वैसे संगीत से हमें ताजगी, सुकून और एनर्जी भी मिलती है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि अच्छे नगमे भी हम आपको सुनवाते रहें। सखियों, हमारे उत्साह उस वक्त बहुत बढ़ जाते हैं जब हम अपने प्रोग्राम में किसी ख़ास शख्सियत पर बातें करते हैं। उनकी बातें करके बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ करने का जज्बा अंगड़ाई लेने लगता है। तो आइए एक ऐसी ही ख़ास शख्सियत पर हम चर्चा करते हैं जो हमारे लिए काबिले फ़ख्र की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोरा। पुनीता अरोरा भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। इन्होंने पुणे से सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और MBBS भी किया। इसी दौरान 15 से ज़्यादा पदक और पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए और 1968 में सेना चिकित्सा कोर ज्वाइन किया और 2004 में उन्हें आई फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे का कमांडेंट बनाया गया। तो बहनों, हम ऐसी उत्साहित बातें, ऐसे फ़ख्र वाली बातें और जिससे आप

का उत्साह बढ़े, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और सुनने में भी हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम भी कुछ इस तरह का काम करें, तो ऐसी चर्चा हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर लेकर के आते हैं। चलिए हम अपने प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: रहना चाहिए, खासकर जब हम घर से बाहर निकलते हैं। और आजकल तो लोग रास्ता चलते मोबाइल चलाते रहते हैं, एक के फैशन सा हो गया है। लोग इसे, हम अगर ये कहें कि ये एक तरह की लापरवाही है, तो ये गलत नहीं होगा। कितना ख़तरनाक होता है जब हम रास्ता चलते वक्त मोबाइल चलाते हैं, ये जान को जोखिम में डालने के बराबर है। मोबाइल रास्ता चलते वक्त बिल्कुल ना चलाएं, इससे हादसा होने का पूरा चांस रहता है। और क्योंकि नज़र मोबाइल पर होती है और आप सड़क पर चल रहे होते हैं, तो सड़क पर चल रही गाड़ी सड़क के गड्ढे का ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी खतरा हो सकता है। और हमें अनजान खतरों से ज़रूर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारी बेहद कीमती है, बेहद अनमोल है और बेहद खूबसूरत भी है। तो हम अपनी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की परवाह क्यों ना करें, और उसकी हिफाजत भी हमारे ही हाथों में है। तो हमें सावधानी से ज़रूर रहना चाहिए। मोबाइल चलाएं, बिल्कुल चलाएं, लेकिन ज़रा सावधानी से, क्योंकि थोड़ी सी अगर आप असावधानी करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आप किसके लिए कितने ख़ास हैं। नहीं जानते हैं आप कि आपकी ज़िंदगी किसके लिए कितनी ख़ास है। तो थोड़ा ध्यान से रखिए अपनी ज़िंदगी को, पूरे इंतज़ाम के साथ। चलिए हम चलते हैं एक और ख़ूबसूरत गीत की तरफ, क्योंकि ज़िंदगी हमारी बेहद खूबसूरत है। थोड़ी सी खूबसूरती में हम और रंग डालते हैं ये गीत सुन करके।
1: It's Valentine's Day.

तो सखियो, अभी तो इश्क की हवा चल रही थी और अभी हम आप से बातें भी कर रहे थे, लेकिन अब शायद बातें का करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी खूब ख्याल रखें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सारे दुखों से दूर रहें, यही हमारी दुआ है। इन्हीं दुआओं के साथ आपकी रेडियो सखी अनीसा मानुसी चाहती है इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

शासन में भरोसा भी बढ़ल बा। प्रधानमंत्री कहले कि गरीब कल्याण यात्रा अब हर आदमी के सशक्तिकरण औरी विकसित भारत के सच्चा सपना करे के एगो सामूहिक अभियान बन गेल बा। विधान परिषद के 9 सीट पर होखे वाला द्विवार्षिक चुनाव और एगो सीट खातिर होखे वाला उपचुनाव खातिर आज नामांकन के अंतिम दिन है। एनडीए के 9 जबकि महागठबंधन के 1 उम्मीदवार अपन नामांकन दाखिल कैले। भाजपा के ओर से भोजपुरी अभिनेता आ गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर आ शीला पंडित अपन नामांकन कैलो। वहीं जदयू के ओर से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद नामांकन पत्र दाखिल कैलो। यानि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ओर से कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी नामांकन पर्चा भरले। एनडीए प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथे साथे एनडीए के कई गो वरिष्ठ नेता शामिल रहे लोग। उन्हें राजद उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह भी अपन नामांकन पत्र भरले। नामांकन वापस लेवे के अंतिम तारीख 11 जून है। जरूरत पड़ला पर इन्हें सीट खातिर 18 जून के वोट डाल जाए और वही दिन सांझ के गिनती भी होगी। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 बरस पूरा हो रहल बा। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से के बदल के ऑल इंडिया रेडियो रखल गए रहे। ये दिन देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण के इतिहास में एगो खास मौका के रूप में दर्ज बा, जिससे पीढ़ियन तक देश के चेतना से जुड़े वाला वाणी के जन्म भइल। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो के बड़ा तेजी से विस्तार भइल और इस साल 1956 में एकरा के आकाशवाणी नाम दिहल गई। आज आकाशवाणी के 591 गो केंद्र काम कर रहल बा, जैसे 23 गो भाषा और 146 गो बोली के कार्यक्रम के प्रसारण कल जाला। एकर पहुंच देश के 98% आबादी तक बा। आकाशवाणी के विदेश सेवा विभाग दुनिया भर में रह रहल भारतवासी के एक साथ जोड़े के विश्व के 100 से बेसी देश में भारत के आवाज पहुंचा रहल बा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर चल के आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सबसे ऊंच मानक के पालन करके 24 घंटा सब प्रमुख भाषा और बोली में समाचार और समाचार कार्यक्रम के प्रसारण करेला। प्रदेश के मौसम में लगातार उमस भरल गर्मी के सिलसिला जारी बा। पिछला 24 घंटा के दौरान कैमूर के भभुआ 40.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ पूरा प्रदेश में सबसे गर्म जगह रहल। राज्य के 1-2 जगह पर हल्का बरखा भी दर्ज कैल गेल बा। मौसम विभाग कहले बा कि आज प्रदेश के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व हिस्सा में 1-2 जगह पर पानी पड़े के संभावना बा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व जिला के 1-2 स्थान पर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धूल भरल आंधी चले के साथ साथ बरखा होके के पूरा आसबा। पश्चिम चंपारण जिला के बलथर और भंगहा इलाका में अलग अलग कार्रवाई करके पुलिस कार पर लदल 111 क्विंटल से बेसी गांजा के साथ 2 गो तस्कर के गिरफ्तार कैले बा। उन्हें जिला के रामनगर थाना

क्षेत्र में पुलिस ठगी गिरोह के भंडाफोड़ करके 3 गो अंतर्राज्यीय ठग के गिरफ्तार कैले बा। औरंगाबाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ के पास एगो पर्यटक बस और ट्रक के बीच भयल भीषण टक्कर में 3 गो पर्यटक के मौत हो गई, उन्हें 20 गो और पर्यटक घायल भेल लो, घायल में 8 गो के हालत गंभीर बनल बा। रोहतास नोखा थाना क्षेत्र के 70 बीघा गांव के पास एगो ऑटो और पिकअप गाड़ी के आमने सामने के टक्कर में एक आदमी के मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 गो और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए बा। लोग एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजे समाप्त भइल।

टक्कर में एक आदमी के मौत हो गई जबकि एक ही परिवार के तीन गो और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए बालो। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजे समाप्त भइल।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

नमस्कार सब श्रोता भाई बहन, आज आपके कार्यक्रम के साथ हम बने सुगिया बहन। आज हमने के एक ऐसन विषय पर चर्चा करल जाई जौन शहर के साथ साथ गांव में भी तेजी से महत्वपूर्ण होत जा रहल बा। विषय बा साइबर अपराध से बचाव है जरूरी। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट और ऑनलाइन बैंकिंग हमनी के जीवन के आसान बना देले बा। अब पैसा भेजना, बिजली बिल जमा करना, सरकारी योजना के जानकारी लेना और खरीदारी करना सब कुछ मोबाइल से संभव बा। लेकिन जहां सुविधा बढ़ रहल बा उहें साइबर अपराधी के गतिविधि भी बढ़ रहल बा। ऐसे जागरूकता और सावधानी बहुत जरूरी बा। देखिए जय श्रोता भाई बहन, साइबर अपराध उ अपराध है जौन इंटरनेट, मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से कईल जाला। आजकल ठग लोग के फोन, मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए धोखा देके उनकर निजी जानकारी और पैसा हड़प लेवल जाला। सबसे आम साइबर अपराध बा जौन फर्जी फोन कॉल, कई बार कोई व्यक्ति खुद के बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बता के फ़ोन करेला और कहेला कि आपके बैंक खाता बंद हो जाई, केवाईसी अपडेट करावे के बा या कौनो योजना के लाभ दिवाए के बा। एकरा खातिर वो आपसे बैंक खाता संख्या, एटीएम कार्ड नंबर, ओटीपी या यूपीआई मांग सकता। ध्यान रखी, कोई भी बैंक, सरकारी संस्था, अधिकारी या कभी भी फ़ोन पर ओटीपी, एटीएम पिन या यूपीआई ना मांगेला। यदि कोई ऐसा जानकारी मांगता तो समझ जाएं कि वो ठग है। श्रोता भाई बहन, आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भी कई तरह के फर्जी लिंक भेजल जाला। ए लिंक पर क्लिक करने से आपके मोबाइल के सारा जानकारी चोरी हो सकता या आपके बैंक खाता खाली हो सकता। ऐसे कभी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करी। कई बार साइबर अपराधी ई संदेश भेजे लंग कि आप कोई लॉटरी जीत ले बानी या आपके सरकारी योजना के तहत बड़ा राशि मिले वाला बा। ऐसन संदेश पर विश्वास ना करी। याद रखी, बिना आवेदन के लिए कोनो पुरस्कार ना मिलेला। ऑनलाइन भुगतान करते समय कुछ सावधानी अवश्य अपनाई। पहली बात, केवल विश्वसनीय और सुरक्षित ऐप के ही उपयोग करी। दूसरी बात, अपन यूपीआई पिन, पासवर्ड और ओटीपी कोई के साथ साझा न करें। तीसरी बात, मोबाइल में स्क्रीन लॉक और मौजूद पासवर्ड अवश्य रखें। चौथी बात, समय आवे पर अपना मोबाइल और ऐप्स के अपडेट करत रहें। पांचवी बात, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्किंग पर बैंकिंग संबंधी कार्य करे से बचें।

श्रोता भाई बहन, आजकल साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बना के भी लोग के ठगेलन। उ कोनो परिचित व्यक्ति के फोटो लगाकर पैसा मांग सकता। ऐसे पैसा भेजे से पहले संबंधित व्यक्ति से सीधा बात करके पुष्टि अवश्य कर ली। यदि कोनो के साथ साइबर ठगी हो जाए कोई के साथ, तो घबराई मत, तुरंत राष्ट्रीय सहायता हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर कॉल करी और शिकायत दर्ज करी। साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत भी कल जा सकता। जितना जल्दी शिकायत करब, पैसा उतना वापस जल्दी मिले के संभावना उतना अधिक हुई। श्रोता भाई बहन, गांव में डिजिटल सेवा के उपयोग तेजी से बढ़ रहल बा। ऐसन में परिवार के बुजुर्ग, महिला और बच्चा के भी साइबर सुरक्षा के जानकारी देना जरूरी बा। यदि हम स्वयं जागरूक रहब और दूसरा के भी जागरूक करब, तबे साइबर अपराधी के मंसूबा कभी सफल ना हुई। त आई आज हमनी के ई संकल्प लिही जा कि OTP, पिन और पासवर्ड कोई के ना बतायल जाए। अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करब। कोई भी संदेश संदिग्ध कॉल या संदेश पर भरोसा ना करें। साइबर ठगी पर होखे पर तुरंत 1930 यानी 1930 पर शिकायत करें। यह बात के साथ अभी यह चर्चा से विदा लेते हुए आगे आई सुने के एक लोकगीत। आज के यह लोकगीत के कलाकार बनी टीकू पाठक।

0: देखिए अभी हमने के कितना बढ़िया गीत गा सुनत रही जा। एक गीत खातिर गीतकार के बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता भाई बहन। देखिए जा श्रोता भाई बहन, अभी हमने के बात कल जाए, जानकारी लिहल जाए स्वयं सहायता समूह कैसे बनाए ये विषय पर। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा लोग के छोटा समूह होला जोन मिल के नियमित बचत करेला, जरूरत पड़े पर एक दूसरे के ऋण देवेला और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने के प्रयास करेला। ई समूह विशेष रूप से महिला के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल बा। स्वयं सहायता समूह बनावे खातिर सबसे पहले एक ही गांव या आसपास के क्षेत्र के 10 से 20 इच्छुक लोग के एक साथ लावल होला। समूह के सदस्य के आर्थिक और सामाजिक स्थिति लगभग समान होके के चाहिए तो ताकि कोनो प्रकार के एक दूसरे के सहयोग कर सकें। एकरा बाद समूह के बैठक आयोजित कर समूह के नाम तय कल जाला और सब सदस्य मिलके अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के चयन कर ली जा। समूह के कुछ नियम बनावल जाला, जैसे नियमित बैठक, मासिक बचत राशि और ऋण वापसी के प्रक्रिया। समूह के प्रत्येक सदस्य के नियमित रूप से एक निश्चित राशि बचत के रूप में जमा करे के होला। ई राशि समूह के खाता में जमा कैल जाला। एकरा खातिर कोनो नज़दीकी बैंक में समूह के नाम से खाता खोलल जा सकता। समूह के नियमित बैठक बहुत महत्वपूर्ण होला। यह बैठक में बचत, ऋण, आय बढ़ावे वाला कार्य और अन्य आवश्यक विषय पर चर्चा कैल जाला। समूह के पूरा लेखा जोखा रजिस्टर में दर्ज कैल जाला। कुछ समय तक नियमित रूप से सफल संचालन के बाद समूह बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता। ई ऋण के उपयोग स्वरोजगार, पशुपालन, खेती, लघु उद्योग या अन्य आयवर्धक गतिविधि में कैल जा सकता। श्रोता भाई बहन, स्वयं सहायता समूह न केवल आर्थिक मजबूती देला बल्कि आत्मनिर्भर नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहभागिता भी बढ़ावेला। तो आई हम भी स्वयं सहायता समूह बना के बचत, सहयोग और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाएं। आज हमने के विशेष जानकारी लेल जाओ इंदु कुमारी से। आज हमने के बता रहल बनी कि स्वयं सहायता समूह कैसे बनावल जाओ और एक लाभ कैसे उठावल जाओ।
1: चाहे हम लाख महिलाओं के लिए शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनैतिक उत्थान की बात करें, मगर आर्थिक रूप से यदि महिलाएं कमजोर हैं तो हमारा बहुमुखी विकास असंभव है। लेकिन महिलाओं को सशक्त करने में उनकी सहायता कौन करे? हम सब हमेशा से ही सुनते आए हैं कि स्वयं सहायता ही सर्वोत्तम सहायता है, संगठन में ही शक्ति है। जाल में फंसे हुए पंछियों की कहानी भी हमने सुनी है। वे अलग अलग नहीं उड़ सके, परंतु जब सब

ने एक साथ ताकत लगाई तो उड़ने में सफल हो गए। हम सभी जानते हैं कि एक लकड़ी आसानी से टूट सकती है, परंतु लकड़ियों के समूह को तोड़ने में कठिनाई होगी। व्यक्ति की इसी सोच ने स्वयं सहायता समूह को जन्म दिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीब व्यक्तियों का समरूप समूह है, जो हमें बताते हैं कि संगठन में कितनी शक्ति है। साथ ही हमें यह भी दिखाते हैं कि स्वयं सहायता समूह ही कैसे सर्वोत्तम सहायता हो सकती है। आज भी ग्रामीण गरीब भूमिहीन परिवार की महिलाएं, जिनकी आमदनी का मुख्य स्रोत मजदूरी ही है, ये महिलाएं कल के लिए कुछ नहीं सोच पाती। इन्हें किसी भी असामान्य परिस्थिति में, जैसे किसी के बीमार पड़ने पर, शादी ब्याह में, घर छवाने इत्यादि आकस्मिक ज़रूरतों के लिए महाजनों पर आश्रित रहना पड़ता है, जहाँ ब्याज दरें बहुत अधिक हुआ करती हैं। उनकी ज़रूरतें छोटी राशि की हुआ करती हैं, परंतु बार बार हुआ करती हैं। बैंक अब तक इन संसाधनहीन लोगों से निपटने में कठिनाई एवं जोखिम के कारण संकोच करती हैं। ऐसे में बहुत ही गरीब महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाती हैं, जो अपनी आय में से सबकी सहमति से छोटी छोटी रकम बचत के रूप में इकट्ठा करती हैं, जिससे समूह की सामान्य निधि निर्मित होती है। इस सामूहिक निधि से समूह के सदस्य को ज़रूरत के अनुसार छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं। वे एकजुट होकर अपनी समस्याओं को सुलझाती हैं तथा सामाजिक आर्थिक अन्याय का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति से सक्षम हो जाती हैं, जिससे वे कई सदियों से ग्रस्त रही हैं। कहते हैं, बचत विकास का पहला कदम है, और इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में बचत करने की क्षमता विकसित होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएं। स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए पहला कदम हम में से ही किसी एक महिला को उठाना पड़ेगा। तरीका काफ़ी आसान है। हमें गाँव में बसे गरीब परिवारों से मिलना होगा, लोगों से अच्छी तरह से परिचित होना होगा, उनके विश्वास को हासिल करना होगा, उनको अपनी योजनाएं समझानी होंगी, साथ ही उनके परिवार के सबसे बड़ी समस्या क्या है यह जानना होगा। इस प्रकार से हमें गरीब परिवारों का प्राथमिक सर्वेक्षण करना होगा। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान हमें लोगों में कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी। सभी लोग एक ही प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, सबके हालात एक प्रकार के हैं, सबको एक प्रकार की रोजी रोटी मिलती है। इस प्रकार हमें गरीब परिवारों को चिन्हित करने में काफ़ी आसानी होगी। हम तय कर पाएंगे कि कौन सा परिवार स्वयं सहायता के रूप में संगठित हो पाएगा। इसके बाद हम गांव के मुखिया, अनुभवी बुजुर्गों एवं खासकर महिलाओं की एक सभा बुलाएंगे और उसी वक्त यह भी बताएंगे कि समूह की बैठक कुछ देने के लिए नहीं, बल्कि गरीब परिवारों की सहायता एवं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए की जाती है। यहाँ हम उन्हें स्वयं सहायता समूह की विस्तृत जानकारी भी देंगे। एक स्वयं सहायता समूह में साधारणतया 10 से 20 सदस्य होते हैं। समूह के सदस्यों की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए। समूह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। एक परिवार का एक ही सदस्य स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो सकता है। सदस्य एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। इसके बाद हमें स्वयं सहायता समूह के सफल संचालन के लिए एक नियमावली बनानी होगी, जैसे समूह द्वारा बैठक के लिए दिन निश्चित हो, बैठक नियमित हो, प्रत्येक बैठक की कार्यवाही बैठक रजिस्टर में लिखना एवं उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक हो, बचत की न्यूनतम राशि जो समूह तय करे अनिवार्य मासिक रूप से जमा किया जाए, बचत की राशि समूह बैठक में ही जमा किया जाए, जमा राशि बैंक में डालने के लिए बारी बारी से समूह की सभी सदस्य जाएं, नियमित बचत राशि जमा नहीं होने पर दंड की व्यवस्था हो, दंड की राशि समूह तय करेगा, लापरवाही बरतने पर समूह से हटाया भी जा सकता है, स्वयं सहायता समूह को लेखा बहियों एवं रजिस्टरों का भी रखरखाव करना होगा, सब प्रकार के लेन देन के लिए सरल और स्पष्ट बही का इस्तेमाल होना चाहिए, सभी रजिस्टर एवं बही खातों को समूह बैठक के दौरान लिखा जाना चाहिए। यदि समूह की महिला लिखने और पढ़ने में सक्षम नहीं है तो किसी और की मदद ली जा सकती है। दूसरे शब्दों में समूह की महिलाओं को निम्नलिखित रजिस्टर रखने होंगे, जैसे कार्यवृत्त पुस्तिका। इसमें बैठकों की कार्यवाही, नियमों एवं सदस्यों के नाम का रिकॉर्ड होता है। बचत एवं ऋण रजिस्टर

जिसमें सदस्यों की बचत एक साथ दिखाई जाती है। ऋण ब्याज आदि भी लिखे जाते हैं। साप्ताहिक रजिस्टर, इसमें प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश लिखा जाता है। पासबुक, समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग पासबुक दी जाती है जिसमें उसका बचत एवं ऋण लिखा होता है। स्वयं सहायता समूह को बैंक से भी जोड़ा जा सकता है। स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद एक दो बैठक के उपरांत स्वयं सहायता समूह के नाम पर बैंक में खाता खोला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुदेश जारी किए हैं जिसके तहत बैंक ऐसे खाते को अपनी शाखाओं में खोल सकते हैं। स्वयं सहायता समूह से निम्नलिखित कागजात प्राप्त करके बैंक स्वयं सहायता समूह के नाम पर खाता खोल सकता है। पहला, स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव। स्वयं सहायता समूह बैंक में खाता खोलने का प्रस्ताव समूह की बैठक में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से पारित करेगा जिसकी एक प्रति बैंक में जमा करेगा। दूसरा, स्वयं सहायता समूह के तरफ से प्राधिकार। स्वयं सहायता समूह कम से कम 3 सदस्यों को प्राधिकृत करेगा जिनमें से कोई 2 संयुक्त रूप से खाता चलाएंगे। सदस्यों के 3-3 फोटो भी जमा करने होंगे। स्वयं सहायता समूह के नियमों की प्रति, यदि स्वयं सहायता समूह ने कोई नियम बनाए हैं तो उन नियमों की एक प्रति बैंक में जमा किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह को बैंक द्वारा ऋण, बैंक हमेशा ऋण स्वयं सहायता समूह के नाम पर देता है, व्यक्तिगत सदस्यों के नाम पर नहीं। सामान्यतः ऋण स्वयं सहायता समूह की सामूहिक बचत राशि के 1 से 4 गुना तक दिया जा सकता है। बैंक स्वयं सहायता समूह को ऋण देता है, समूह के सदस्यों को नहीं। अतः स्वयं सहायता समूह का मूल्यांकन अति उत्तम आवश्यक है। समूह को मिले कुल ऋण में सदस्यों को किस तरह से ऋण दिए जाएंगे यह समूह तय करता है। अपने सदस्यों को दिए गए ऋण की शर्तें, ब्याज दर, चुकौती की अवधि का निर्णय समूह अपनी बैठक में कर लेते हैं। बैंक चुकौती के लिए समूह के सदस्य सामूहिक रूप से जिम्मेवार होते हैं। समूह अपने सदस्यों से दिए गए ऋण की चुकौती समय पर करवाता है ताकि बैंक ऋण समय पर चुका सके। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों से कोई भी जमानत नहीं ली जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूह के बचत खाते में जमा राशि को बैंक जमानत के तौर पर नहीं रख सकता। ऐसा करने से समूह अपने आंतरिक बचत में से समूह को ऋण प्रदान नहीं कर सकेगा। स्वयं सहायता समूह को वित्त पोषण करते समय मुद्रा अंकित समझौता करना होगा जिसके द्वारा दोनों पक्ष उल्लिखित शर्तों के पालन के लिए बाध्य होंगे।

देखिए जहाँ श्रोता भाई बहन, अभी हमने के जानकारी लेते रहे जहाँ स्वयं सहायता समूह कैसे बनाए, वार्ताकार ने इंदु कुमारी। ए बढ़िया सा जानकारी खातिर इंदु कुमारी के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई बहन, प्रतिवर्ष 8 जून के विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनावल जाला। एकर उद्देश्य लोग के मस्तिष्क ट्यूमर के प्रति जागरूक करना, एकर लक्षण के जानकारी देना तथा मरीज के उनका परिवार के मनोबल बढ़ाना बा। श्रोता भाई बहन, हमने के मस्तिष्क शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ई हमने के सोचे समझे, बोले, चले और याद रखे जैसन गतिविधि के नियंत्रित करेला। जब मस्तिष्क के कोशिका असामान्य रूप से बढ़े लागेला तो ट्यूमर के निर्माण हो सकता। मस्तिष्क के ट्यूमर 2 तरह के होला, सौम्य अर्थात गैर कैंसरयुक्त और घातक अर्थात कैंसरयुक्त। समय पर पहचान और उपचार से कई मामला में अच्छा परिणाम प्राप्त कर जा सकता। एकर कुछ प्रमुख लक्षण बा, लगातार सिर दर्द रहना, बार बार उल्टी होना, दृष्टि कमजोर होना या धुंधला दिखाई देना, याददाश्त में कमी आना, शरीर के कोई हिस्सा में कमजोरी महसूस होना, दौरा पड़ना, बोले या समझे में कठिनाई होना। यदि इनमें से कोई लक्षण लंबा समय तक दिखाई दे तो चिकित्सक से अवश्य

परामर्श लेवे के चाही। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर लोग समस्या समझ के नज़रअंदाज कर देवेलन, लेकिन यदि समस्या लगातार बनल रहे तो जांच करना आवश्यक बा। मस्तिष्क ट्यूमर के सब कारण पूरा तरह से स्पष्ट ना होला, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कई बीमारी के जोखिम कम कल जा सकता। एकरा खातिर संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, तंबाकू और नशा से दूर रहें, पर्याप्त नींद लें, स्वास्थ्य संबंधित समस्या के अनदेखा न करें। आज विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस पर हमने की ये संकल्प लिहल जरूरी बा कि हमने के अपना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहब और दूसरा के भी जागरूक बनाएब। अब बात कल जाओ दूसरा महत्वपूर्ण दिवस विश्व महासागर दिवस के। विश्व महासागर दिवस भी प्रतिवर्ष 8 जून के ही मनावल जाला। यह दिवस के उद्देश्य महासागर के महत्व के समझाना और ओकर संरक्षण के प्रति लोग के जागरूक करना बा। श्रोता भाई बहन, पृथ्वी के लगभग 70% भाग महासागर से ढकल बा। महासागर केवल जल के विशाल भंडार नहीं है, बल्कि जीवन के आधार है। महासागर हमने के अनेक प्रकार के लाभ पहुँचावेला। पृथ्वी के तापमान के संतुलित रखेला, वर्षा चक्र के नियंत्रित करेला, ऑक्सीजन के बड़ा हिस्सा उपलब्ध करावेला, लाखों लोग के रोजगार प्रदान करेला, जैव विविधता के संरक्षण करेला। क्या आप जान रहल बनी कि हमनी के जोन ऑक्सीजन ले रहल बनी जा ओकर लगभग आधा हिस्सा समुद्री पौधा और सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न कल जला। लेकिन आज महासागर कई चुनौती के सामना कर रहल बा। प्लास्टिक प्रदूषण, रासायनिक कचरा, तेल रिसाव और जलवायु परिवर्तन एकरा खातिर गंभीर खतरा बन चुकल बा। हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुँचेला, एकरा से समुद्री जीव के जीवन खतरा में पड़ जाला। कई बार मछली, कछुआ और पक्षी प्लास्टिक के भोजन समझकर निगल जाला, जेकरा से ओकर मृत्यु तक भी हो जाला। हालांकि हमने के गांव में रहे निजा और समुद्र से दूर हो सकता निजा, लेकिन हमने के दैनिक कार्य भी महासागर के प्रभावित करेला। जब हम प्लास्टिक के अधिक उपयोग करी लजा और इधर उधर फेंक दे लजा तो उन नदी के माध्यम से अंततः समुद्र तक पहुंच सकता। महासागर के बचावे खातिर हम सब कुछ छोटा छोटा कदम उठा सकता निजा। एकल उपयोग वाला प्लास्टिक के प्रयोग कम करी, कचरा के उचित प्रबंधन करी, जल स्रोत के प्रदूषित न करी, अधिक से अधिक पेड़ लगाई, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोग के जागरूक करी। महासागर स्वस्थ रही तो पृथ्वी के पर्यावरण भी स्वस्थ रही। श्रोता भाई बहन, आज हमने के दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी जा। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हमने के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे के प्रेरणा देला, जबकि विश्व महासागर दिवस हमने के पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के रक्षा के भी संदेश देला। आई हम सब मिलके के ई संकल्प लेही जा कि अपना स्वास्थ्य के नियमित ध्यान रखब, कोई भी बीमारी के लक्षण के नज़रअंदाज ना करब, पर्यावरण और जल स्रोत की रक्षा करब, प्लास्टिक प्रदूषण कम करे के में अपन योगदान देव। ए संदेश के साथ कार्यक्रम गांव घर के समय समाप्त हो रहल बा, लेकिन कुछ जानकारी मौसम के भी ले लिहल जाओ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 3 से 7 जून के दौरान जिला के अधिकांश मौसम भाग में मौसम शुष्क रहे के संभावना बा। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री के आसपास रहे के संभावना बा। अगला 2 दिन तक 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चले के संभावना बा। एकरा बावजूद पूर्वानुमान के अवधि के शेष दिन में दक्षिण पूर्वी हवा चले के अनुमान बा। और अब यही के साथ आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पर्यावरण संरक्षण में अपन भागीदारी निभा

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

साजन चले ससुराल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे इंदु सोनाली और साथियों की आवाज़ों में। और अब आइए सुनते हैं धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गीत।

0: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। समय मिलाइए, शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: आयोजक है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया, आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओ माय गॉड, कितने कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, जी हाँ, ये विश्वविद्यालय है जहाँ टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं, हाँ, आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए नंबर, नंबर है 94318-99002, 94318-99002। और दूसरा नंबर है 1800121051, 1800121051, ये नंबर है। इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल चलते हैं, आज हमने बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर एक बार चर्चा की थी और वायदा किया था कि अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल आएंगे तो हम फिर से इस पर जानकारियां दिलवाएंगे। ढेर सारे सवाल आए हैं इस विषय को लेकर, इस बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी को लेकर। आइए हम इस पर फिर से आपको जानकारी दिलवाते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं इस विभाग बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब, क्या हैं यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियां देंगे। आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं।

0: हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी, सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी, ये बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं, तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, यह भी इनका पार्ट आ जाता है।
0: नीरज जी, मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
1: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं। कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए हैं जहां कार्डियक सर्जरी हो रही है, तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ, बुनियाद कार्यक्रम है। युवा साथियों, टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं, और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ, नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001, ये नंबर है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, ये जो है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, या रोजगार है ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है। एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला, ये जरूर हम देखते हैं।
1: जी, क्योंकि जैसे पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं, यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ, लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश, और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है ये। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001। नीरज जी, एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब 3 तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर, दूसरा

0: कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाव में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
1: सर बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं, रोजगार वाले रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट, वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
0: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना, उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या, या

0: जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
1: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना, उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या, या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
0: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं, वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाएगी।
1: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से, सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800120051 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है, वहां आए, देखें, पढ़के समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो, हाँ, तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहां पढ़ाई होगी। और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर, शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप?
0: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है, और फैकल्टी जो हमारे हैं, अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन है, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी, जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
1: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी, जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है, और ये सारी चीजें, तमाम चीजें, हाँ, हमारे युवा साथी, उनके गार्जियन जरूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज्यादा चिंतित होते हैं।
0: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और कई दफा तो ये लोग अब इस कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज। और इसके अलावा बाहर भी, विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएससी करके फिर दे कैन कम इनटू एकेडमिक्स।
1: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। चलने से पहले हम नंबर बता दें, 9431899002, 9431899002। तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज पर। समय मिलाइए, शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

तो आइए गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में एक नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर। आज दिनांक 8/6/2006 को अपराह्न 12:30 पर बिहार सरकार के मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। कैमूर जिला द्वारा फार्मर रजिस्ट्री के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रगति अच्छी पाई गई। जिले में अब तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 74.2% फार्मर रजिस्ट्री कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप कैमूर जिला राज्य के शीर्ष 10 जिलों में अपना स्थान बनाने में सफल रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय ने इस उपलब्धि पर सभी कृषि विभाग के पदाधिकारियों, कर्मियों एवं सभी संबंधित विभागों के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए शेष किसानों का पंजीकरण अभियान मोड में शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। कैमूर जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सुगम तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सभी पात्र किसानों से अपील की कि वे अपना फार्मर रजिस्ट्री कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। कैमूर जिला प्रशासन निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% फार्मर रजिस्ट्री लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं आशा फिल्म का ये गीत।

श्रोता दोस्तों नमस्ते, माफ़ी कीजिएगा, गुड इवनिंग रोहतास में। अब सुनिए कैमूर की कुछ बातें। जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। और अब इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो

0: पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें, सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें, अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
7: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहां लापरवाही नहीं पहुंचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
8: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
7: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: नमस्कार, मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे, आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
10: आकाशवाणी 90 वर्ष का हो रहा है। 8 जून 2026 को आकाशवाणी की आयु 90 वर्ष पूरी हो रही है, और इसके लिए हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी से जुड़े तमाम पदाधिकारियों कर्मियों को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि यह आकाशवाणी वह एक माध्यम है कि गांव का एक गरीब भी देश की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ होता है। और हम सब बचपन में रेडियो सुनते थे और यही रेडियो हमको देश और प्रदेश की सारी खबरें सुनाता। आज टेलीविजन के दौर शुरू हो गए हैं और आज भी टेलीविजन के दौर होने के बावजूद आकाशवाणी के खबरों की प्रासंगिकता उतनी ही है। इसलिए 90 वर्ष पूरे होने पर मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बधाई।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में गरीब कल्याण और समावेशी विकास को मिली नई गति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। जी रामजी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मिली स्वीकृति। विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एनडीए के 9 और महागठबंधन के

0: उम्मीदवार ने नामांकन किया। और आकाशवाणी लोक प्रसारण सेवा के गौरवशाली 90 वर्ष आज पूरे, देश भर से मिली शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का सपना साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: इधर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी योजना को स्वीकृति दी गई। ये योजना आगामी 1 जुलाई से राज्य में लागू होगी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः लागू करने की मंजूरी दी। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत बिहार शरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में जलापूर्ति तथा सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की सैद्धांतिक सहमति भी दी गई। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को मई, जून और जुलाई महीने की पेंशन राशि के भुगतान के लिए 3,662 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम स्वीकृति भी दी गई। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। एक रिपोर्ट।
3: नामांकन के अंतिम दिन आज प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। विधानसभा परिसर में दिन भर नेताओं और समर्थकों की आवाजाही बनी रही। सत्तारूढ़ एनडीए के 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता दल यूनाइटेड की ओर से मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट के उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भोजपुरी फिल्म अभिनेता से नेता बने पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने नामांकन पत्र दाखिल किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अशरफ अंसारी ने भी पर्चा भरा, जबकि महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। राज्य मंत्रिमंडल में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता दीपक प्रकाश ने नामांकन दाखिल नहीं किया। एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: लोक जनशक्ति पार्टी आर के उम्मीदवार अशरफ अंसारी ने नामांकन भरने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रति आभार जताया और कहा कि वे पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
4: ये हमारे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारी पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद

0: हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास, उसका ये नतीजा है हम जैसे मामूली कार्यकर्ता के लिए। और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी उन सभी लोगों के प्रयास और विश्वास पर खड़े उतर सके।
1: पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि संगठन के हर सदस्य को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है।
2: ये बड़ा दिन है, पार्टी ने अपने पुराने ईमानदार कार्यकर्ता को मौका देने का काम किया, जो कहीं ना कहीं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को मजबूती देने का काम करती है।
1: इधर जदयू उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने अपने ऊपर भरोसा जताने के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया।
3: पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो भी विश्वास पार्टी ने किया है उस पर मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। जो भी दायित्व मुझे मिली है जिसे मैं ईमानदारी से, निष्ठा से निभाऊंगा। और मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी ने जो विकसित बिहार, समृद्ध बिहार का सपना देखा उसे पूरा करूंगा।
1: पार्टी उम्मीदवार भारती मेहता ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदर्शों पर चलते हुए नारी सशक्तिकरण के प्रयास को और सुदृढ़ करेंगी।
4: आदरणीय नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत को धरातल पर उतारना, जिस तरह उन्होंने बेटियों को सशक्त किया है, वो किसी भी स्थिति में बिहार में आगे बढ़ता जाए, वो धारा चलती रहे, वो धारा आगे बढ़ती रहेगी। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने उम्मीदवारों पे विश्वास किया है और सबको शुभकामना है।
1: इधर राजद से विधान परिषद सीट के उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि पार्टी की संख्या बल भले कम हो, हम पार्टी के झंडे को नहीं झुकने देंगे।
5: इसके लिए ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और जो हमारे नेता हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर विश्वास किया है। राष्ट्रीय जनता दल का जो मेरा झंडा है, चाहे मेरी संख्या कितना भी हो सदन में, झुकने नहीं देंगे। और जिस कारण मुझे पुनः सदन में भेजा है, 100% मैं खड़ा उतरूंगा।
1: शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने उन अटकलों को खारिज किया है जिसमें उनके पुत्र दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करने की बात कही गई थी।
1: नाराजगी का क्या सवाल, बाकी उसके लिए क्या है, फिर नहीं मिली मिलेगी।
2: अरे मंत्री, जब तक एनडीए के नेता सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया है, बने रहेगा। सदन की सदस्यता जब आप आवश्यकता होगी वो हो जाएगी, उसके लिए क्या चिंता है।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
3: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं दी हैं।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी के सभी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामना है। आकाशवाणी अपने आप में ये जन जन की आवाज और आगाज है। आकाशवाणी की जो प्रामाणिकता थी न्यूज के संदर्भ में, यानी कि हर लोगों की जुबा पे आकाशवाणी की ही आवाज की इंतजार रहती थी। 90 वर्ष विश्वास का वर्ष, एक अपने आगाज और आवाज का वर्ष। इस 90 वर्ष के लिए आकाशवाणी को इस यात्रा तय करने के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है और गरीब कल्याण योजना पूरे विश्व के लिए उदाहरण बन गई। प्रदेश में उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ 40.5 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।
3: दिनांक 9 जून राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: पश्चिम चंपारण जिले के बलथर और भंगहा क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार पर लदे 111 क्विंटल से अधिक गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत देवमोड़ के पास एक पर्यटक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 3 पर्यटकों की मौत हो गई, वहीं 20 अन्य पर्यटक घायल हो गए। घायलों में 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। रोहतास जिले में नोखा थाना क्षेत्र अंतर्गत 70 बिगहवा गांव के पास एक ऑटो और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक 4 पहिया वाहन और 1.25 लाख रुपए नकद भी बरामद किया है। अररिया जिले के आरएस थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक 4 पहिया वाहन से 228 लीटर बियर बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में गरीब कल्याण और समावेशी विकास को मिली नई गति। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। जी राम जी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मिली स्वीकृति। विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एनडीए के 9 और महागठबंधन से 1 उम्मीदवार ने नामांकन किया। और आकाशवाणी लोक प्रसारण सेवा के गौरवशाली 90 वर्ष आज पूरी, देश भर से मिली शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
4: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
5: ओह लवली, वेल डन।
4: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो।

0: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्वी चंपारण जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आलोक कुमार का है, इसे प्रस्तुत कर रही हैं अंशु अवस्थी। पूर्वी चंपारण जिले में तीसरे चरण के सहयोग शिविर का आयोजन आगामी 16 जून को किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि पदाधिकारियों को प्रखंड एवं पंचायत आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1100 पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जानकारी प्राप्त कर सकता है। डीएम ने कहा कि परिवाद दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन का निष्पादन कर दिया जाएगा। इससे पूर्व जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। ईख विकास के उपनिदेशक द्वारा बीते दिनों एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के अंतर्गत भुगतान की स्थिति, गन्ना सर्वे, गन्ना यंत्रीकरण, क्षेत्र विस्तार योजना तथा ईख मूल्य भुगतान की गहन समीक्षा की गई। बैठक में परिक्षेत्र की चीनी मिलों एचपीसीएल सुगौली, एचपीसीएल लौरिया, मंझौलिया चीनी मिल, न्यू स्वदेशी चीनी मिल, नरकटियागंज, हरिनगर चीनी मिल और भारत चीनी मिल सिंगवलिया के महाप्रबंधक एवं संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मेगा कृषि ऋण जन संपर्क शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले भर से जीविका समूह की सदस्याओं एवं किसानों ने भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा 2026 जीविका समूह की सदस्याओं के बीच 51 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। इधर 10 जून को होने वाली बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की अधिनायक लिपिक परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7896 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के स्वच्छ एवं निष्पक्ष संचालन के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अब प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल, इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
6: पश्चिम चंपारण जिले के आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने जिले के 3 प्रखंडों में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बेतिया सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का पंचायत स्तर पर ही त्वरित गति से समाधान किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निर्धन किसान, मजदूर, महिलाओं एवं जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बीते दिनों बगहा पुलिस जिला के रामनगर स्थित खटौरी गांव में एक निजी हाईटेक हैचरी प्लांट का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक यूनिट प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत स्थापित की गई है, जिसका संचालन क्षेत्र के युवा उद्यमी रवि शंकर नाथ तिवारी द्वारा किया गया है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि यह परियोजना न केवल व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए आधुनिक पशुपालन एवं उद्यमिता का प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगी। जिले में मखाना की खेती एवं मखाना व्यवसाय को लेकर किसानों के बीच उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनो के संदेश से प्रेरित होकर बैरिया निवासी युवा किसान रंजीत कुमार चौधरी ने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी नौकरी छोड़कर मखाना उत्पादन एवं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपनी अहम पहचान बनाई है। रंजीत कुमार चौधरी ने दरभंगा से मखाना व्यवसाय की शुरुआत की। शुरुआत में वे दरभंगा से कच्चा मखाना लाकर बैरिया में उसका प्रोसेसिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग कार्य करने लगे। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया और आज उनके द्वारा तैयार मखाना देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों तक भी भेजा जा रहा है। बगहा SSB 65वीं बटालियन के ग्राउंड में 227 पुलिस जवानों का पासिंग आउट परेड का आयोजन

0: स्थापित किया गया। वहीं नरकटियागंज स्थित एसएसबी की 44वीं बटालियन के ग्राउंड में 152 पुलिस जवानों का पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। बगहा के परेड में आईजी ट्रेनिंग अनुसुईया रण सिंह साहू शामिल हुई, जबकि नरकटियागंज में आईपीएस महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल निशांत कुमार उज्ज्वल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महानिरीक्षक ने सभी प्रशिक्षुओं से अपने दायित्वों का पूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। बीते दिनों पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार सांसद चले गांव की ओर कार्यक्रम के तहत अपने क्षेत्र में निकले। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पुल और जल निकासी से जुड़ी समस्याएं उठाई। जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए सांसद ने समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले की हलचल।

प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी महफिल में बैठा है आपका अपना ओम प्रकाश। नमस्ते। जिंदगी एक किताब है, हर दिन एक नया पन्ना है। कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ का अधूरा रह जाना है।

हंसते रहो तो राहें आसान लगती हैं, मुश्किलें भी मेहमान लगती हैं, जो गिरकर फिर संभल जाए उसी की जिंदगी महान लगती है।

जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहिए, दिल के दर्द को भी गुनगुनाते रहिए, मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, कोशिशों के दीप हर हाल में जलाते रहिए, क्योंकि जिंदगी में कभी उतार तो चढ़ाव आनी ही आनी है ना। और इसी चीज को आइए सुनते हैं तरन्नुम में।

गुमराह फिल्म के इस गाने को सुनना चाहते हैं? सहेली रेडियो श्रोता संघ बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिकरा डावर, बेबी आयशा खत्री, घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री, आप सबों ने अपने मेल को इतना साफ और इतना बढ़िया लिखा है, आपको धन्यवाद। पढ़ने में बहुत आसानी हुई।

अब शामिल हो रहे हैं हमारे ये श्रोता। फुटानी चौक नरहन एस्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्र

नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, आराध्या और लल्लू पंडित, आप सबों की पसंद है वो गाना जिसमें बात है हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अगर हम जानना भी चाहें कि आपको किसका ख्याल आ गया, शाम तो हो ही गई है, तो भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए पूछना पड़ेगा आपसे और हम पूछ भी नहीं सकते, इतने आप हमारे मानिंद श्रोता हैं। चलिए हम अपनी तरफ से समझ लेते हैं कि शायद शायद शायद आपको आकाशवाणी सासाराम की याद जरूर आई होगी और उसके बाद याद आई होगी इस कार्यक्रम की, जिसे आप सजाते हैं, संवारते हैं और खुद सुनते भी हैं, है ना? अगर मैं सही भी हूँ तो भी ठीक, और अगर गलत हूँ तो बस माफ़ कीजिएगा। लीजिए पहले अपनी पसंद का ये गीत सुनिए।

शाम ढली तो तेरी यादों का कारवां आया, दिल के सुने आंगन में फिर वही समा आया, ख्यालों में तेरा चेहरा यूं उतर आया, जैसे चांद अंधेरी रात में नजर आया।

लैला मजनू फिल्म के इस गाने को सुनना चाहते हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे विद्यार्थी राकेश रंजन विद्यार्थी रवि रंजन विद्यार्थी संजय कुमार विद्यार्थी ओम कुमार गुंजेश कुमार रिया रानी कुमकुम कुमारी साक्षी अच्छे लाल राय बुल्की वाली और फलना झा और इसी गीत के लिए हमें मेल मिला है किनका ये नाम भी हम पढ़ दें। ताजपुरा मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी मीना कारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री।

और अब शामिल हो रहे हैं हमारे ये श्रोता, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पिहू स्वर्णकार। आप सबों की पसंद है दोस्ताना फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, बात जब दोस्तों की हो रही हो तो बस हम भी कुछ कहना चाहेंगे आपकी इजाज़त से। जो चाहत है मेरी बस वही कहना चाहेंगे कि न कोई दौलत चाहिए न कोई शान चाहिए, न कोई दौलत चाहिए न कोई शान चाहिए, मुझे तो बस दोस्तों की मुस्कान चाहिए। हर गम में जो साथ खड़े रहें ऐसे दोस्तों का प्यार चाहिए। और सच मानिए दोस्तों, तो ये सब कुछ मिलता है आप सब।

जीने की राह फिल्म का ये गाना सुनिए, पसंद आप समू की है। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुगना और यस मंसूरी

इसी गाने को सुनना चाहते हैं वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमस खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जमा मस्जिद रोड से आप हैं हाजी इमहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी।

अब आइए सुना जाए मधुमती फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह

प्रीत रमेश साहू बक्सर बिहार से। डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। और सारिमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, इस फिल्म का ये गीत सुनिए, पसंद आप सबों की है। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल।

इस गीत को सुनना चाहते हैं गुमला झारखंड से सगुफ्ता अंजुम और एसएम जावेद, चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, दतरंगी से आप हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।

अब आइए एतवार फिल्म का एक गीत सुना जाए। पसंद आप सबों की है। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़।

साकिब, आलिया, इब्राहिम, कमाल, मिराज, निसार, पंकज कुमार। पता आकाशवाणी सा।

अब आइए सुनते हैं मिलन फिल्म का गीत। पसंद आप सबों की है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। गांव फरांसी, जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी और इनके परिवार के सभी सदस्य।

इस गीत को सुनना चाहते हैं गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर चौहान और बड़क चौहान, ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोतीलाल गुप्ता, लाल बिहारी सिंह और बीरा सिंह।

और अब आइए सुनते हैं मनचली फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चिनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, टाउनशिप सेक्टर 8, भिलाई नगर से।

मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से सनबूर परवीन अंसारी, आमना खातून अंसारी, उस्मान अली अंसारी, गुड़िया प्रवीन अंसारी, अस्तुपुरा जिला मऊ से शुमैला परवीन अंसारी, आसिफ अली अंसारी, नूरी परवीन अंसारी, रियाज सऊदी अरब से आप हैं अशरफ अली अंसारी, सारिक अली अंसारी और इनके ढेर सारे दोस्त।

0: और अब इसी के साथ ई मनपसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव

0: को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थयात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,500,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपये देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: और न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉक टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ, इसका पुनरुद्धार

0: करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुँच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग, रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

लोकधारा कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे वंदना कुमारी को। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं बालेश्वर प्रसाद और उनके साथियों का गाया ये भोजपुरी लोकगीत।

राजा बानी पगरिया यहीले रे दीवानी पृथ्वी राज के लिए, अरे दीवानी पृथ्वी राज के लिए, राजा देश देश से

पृथ्वीराज के फोटो में जब सेहरा दियली डालो दीवानी पृथ्वीराज के लिए। अरे दीवानी पृथ्वीराज के लिए राजा सभा बीच में भाई।

लोकधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बालेश्वर प्रसाद और उनके साथियों को, और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाएं प्रेम रंजन सिंह और उनके साथियों का गाया ये भोजपुरी लोकगीत।

प्रेम रंजन सिंह के गाए इस भोजपुरी लोकगीत के साथ ही भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। पेश खिदमत है गजल का प्रोग्राम महफिल। माफ कीजिएगा श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम बंदगी।

चांद कादरी और अफजल चिश्ती के गाइस कव्वाली के साथ ही बंदगी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुआ चाहते हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, जीवन संगी।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज बात एक ऐसी अदाकारा की जो अपने अंदाज से जितना लुभाती है उससे ज्यादा भाती है उनके फिटनेस की चमक। अपनी मौजूदगी से ही वो कर देती है पॉजिटिविटी की बौछार और दिल ये कह उठता है,
1: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
0: जी हाँ, आज बात 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी की।

0: शिल्पा शेट्टी, जिन्हें दुनिया भर में उनकी फिटनेस से तो पहचान मिली ही, साथ ही वो कई अलग अलग सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई हैं। वो न सिर्फ एक अभिनेत्री हैं, बल्कि फिटनेस गुरु, बिजनेस वुमन, सामाजिक कार्यों की बुलंद आवाज, एक बेहतरीन माँ और पत्नी हैं। शिल्पा जिस अंदाज में घर और बाहर के कामों में संतुलन रखती हैं, वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। फिटनेस का आलम ये है कि उम्र के 5 दशक पार कर चुकी शिल्पा अपनी उम्र को मात देती नजर आती हैं।
1: दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं...

4 जून 1975 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी अश्विनी शेट्टी, जिन्हें आज हम शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी एक बिजनेसमैन थे और माँ सुनंदा शेट्टी अपने समय की मशहूर मॉडल। अब आप ये सोचें कि शिल्पा को यहीं से फिल्म में जाने की प्रेरणा मिली, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुंबई में पढ़ाई कर रही शिल्पा तो अपने पिता के बिजनेस को संभालने की तैयारी में थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

स्कूल के दिनों में शिल्पा अपनी खूबसूरती को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक रफ एंड टफ लड़की मानी जाती। अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन शिल्पा शेट्टी खेल में खोई रहती। खेल के कारण फिटनेस का सिलसिला बचपन से ही साथ रहा। वही भरतनाट्यम में पारंगत हुई तो वो शुरू से ही डांस में भी अच्छी थी और इसके साथ ही शिल्पा कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। वैसे ध्यान दें तो ये सारी क्वालिटी एक फिल्मी हीरो की छवि दिखाती है। शायद यही कारण है कि शिल्पा भी अपनी अनुशासन से भरी लाइफ के चलते कई लोगों के लिए एक हीरो ही है।

भले ही शिल्पा खुद को हीरोइन की तरह नहीं देख रही थी, लेकिन 10वीं पास करते ही मॉडलिंग करने लगी थी। वो कई कमर्शियल्स में भी नजर आती हैं और इस तरह उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म गाता रहे मेरा दिल, जो कभी भी दर्शकों के सामने आई ही नहीं, बल्कि पहली बार शिल्पा बड़े पर्दे पर नजर आई शाहरुख खान के साथ। 1993 की ये फिल्म थी बाजीगर।

बाजीगर में शिल्पा के काम को सराहा गया, उन्हें काम भी मिलने लगा, लेकिन बाजीगर जैसी सफलता के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान आई उनकी बहुचर्चित फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ शिल्पा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में शिल्पा ने एक डांसर की भूमिका निभाई थी और उनके इस किरदार और उनके इस डांस ने उन्हें एक अलग पहचान दी। शिल्पा के करियर में उन्हें ऐसे कई किरदार और गीत मिले जिनमें उन्हें डांस करते देखा गया और ये गीत हिट भी हुए। कुछ फिल्मों में तो शिल्पा सिर्फ एक गाने के लिए भी आईं, क्योंकि वो डांस उनके ऊपर ही जचता है, फिर वो शूल का गीत हो या दोस्ताना का अंदाज। शिल्पा को आज भी उनके इन डांस नंबर्स के लिए याद किया जाता है।

शिल्पा ने एक्टिंग के गुर सेट पर ही अपने अलग अलग किरदारों को निभाते हुए सीखे, पर एक समय के बाद शिल्पा एक ही तरह के किरदार करते हुए थक चुकी थीं। वो कुछ अलग करना चाहती थीं। शिल्पा जो चाहती थीं, वो उन्होंने कर भी दिखाया। फिल्म जानवर में जब शिल्पा ने ममता ओबेरॉय के रूप में एक माँ के अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बयां किया, तो दर्शकों की आंखों में आंसू और आलोचकों के मुंह से वाहवाही साथ ही निकले।

फरिश्ते फिल्म में शिल्पा का मछुआरन का किरदार उनके डायलॉग्स के अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से एक अलग रंगत में ढल गया। वैसे शिल्पा इससे पहले ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी थी। साल 2000 में आई उनकी फिल्म धड़कन। इस फिल्म में जिस तरह बेबसी, लाचारी, प्यार, जुनून जैसे भावों को शिल्पा ने अपने अभिनय से दर्शकों तक पहुँचाया, लोगों को पर्दे पर शिल्पा नहीं नजर आई तो सिर्फ अंजलि।

शिल्पा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपना नाम कमा रही थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में उनके काम को सराहा गया। वैसे यहाँ ये बताते चलें कि शिल्पा 6 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल भी बोल लेती हैं। उनके अभिनय की भाषा दर्शकों के दिलों तक पहुँचती है।

शिल्पा की हर फिल्म की चर्चा करना तो संभव नहीं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी बात करना जरूरी है। साल 2004 में आई शिल्पा की वो फिल्म जिसे आज तक देश विदेश में सराहा जाता है, ये फिल्म थी फिर मिलेंगे। शिल्पा ने तमन्ना साहनी के किरदार के जरिए एक HIV पॉजिटिव लड़की के जीवन को लोगों के सामने रखा। ये फिल्म नहीं बल्कि लोगों को एड्स पीड़ितों की परेशानियों और एक समाज के तौर पर हमारे कर्तव्यों को उजागर करने की पहल थी। इस फिल्म से मिली सारी रकम शिल्पा ने HIV पॉजिटिव पीड़ितों के लिए दान दे दी। फिर मिलेंगे को शिल्पा अपनी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानती हैं।

शिल्पा का अभिनय लगातार निखर रहा था। वो खुद को एक एक्टर के तौर पर पसंद करने लगी थी। कन्नड़ फिल्म ऑटो शंकर में शिल्पा ने नेगेटिव किरदार यूं निभाया कि उन्हें साउथ के गब्बर सिंह की उपाधि मिल गई। शिल्पा की बेहतरीन एक्टिंग का एक और नजारा मिला। फिल्म थी लाइफ इन अ मेट्रो। शिल्पा को शिखा घोष के किरदार में देख न जाने कितनी महिलाओं ने उसमें अपनी कहानी देख ली।

अपनी माँ सुनंदा द्वारा निर्मित इंडियन चाइनीज फिल्म द डिजायर में भी एक रोमांचक भूमिका निभाई। वैसे शिल्पा शेट्टी टीवी में आने वाली शुरुआती फिल्म सितारों में शामिल हैं। वहीं उन्होंने यूट्यूब ऐप डीवीडी वगैरह की ओर भी पहले कदम बढ़ाया। इसी तरह का एक और जोखिम भरा काम उन्होंने किया जब साल 2007 में वो ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई। पूरे समय कैमरों के सामने रहना आसान नहीं होता। शिल्पा के सामने कई तरह की परेशानियां भी आईं, लेकिन वो डटी रहीं। विनम्रता, सहनशीलता और दृढ़ता को उन्होंने अपना साथी बना लिया और इस शो की विनर बनी।

दोस्ताना के इस गाने में शिल्पा थिरकती नजर आईं और फिल्म के स्टार्स से ज्यादा शिल्पा की चर्चा हुई। शिल्पा अपने फिल्मी पर्दे से निकलकर टीवी की दुनिया में छाने लगी। वो कई रियलिटी शोज का हिस्सा बन रही थी, फिल्मों से एक दूरी सी बनती जा रही थी और यही वो समय था जब शिल्पा ने लंबे समय से दोस्त रहे राज कुंद्रा से शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद साल 2012 में शिल्पा पहली बार माँ बनी। उनके बेटे वियान भी अपनी माँ की तरह ही फिटनेस और मार्शल आर्ट के दीवाने हैं। साल 2020 में शिल्पा सरोगेसी के जरिए दोबारा माँ बनी अपनी बेटी समीक्षा की। शिल्पा अपने बच्चों को हर त्योहार का आनंद दिलाती हैं। एक माँ के तौर पर उनका ये अंदाज भी फैंस को पसंद आता।

लंबे समय तक फिल्मी पर्दे से गायब रहने के बाद शिल्पा ने बतौर निर्माता ढिस्क्याओं फिल्म से वापसी की और अभिनेत्री की तरह नजर आई फिल्म निकम्मा और सुखी में। इन फिल्मों में शिल्पा ने कुछ हट के किरदार निभाए। रोहित शेट्टी की ओटीटी सीरीज पुलिस फोर्स में भी शिल्पा के किरदार तारा शेट्टी को सराहना मिली, लेकिन हंगामा 2 में शिल्पा का वही अंदाज देखने मिला जो उनके फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में दिखा था। यहाँ भी शिल्पा एक बार फिर अपने उसी सुपरहिट गाने पर झूमती नजर आई, साथ थे जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी।

वहीं शिल्पा को स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया और यहां उन्होंने चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड अपने नाम किया। शिल्पा अपने ग्लैमरस अंदाज, कातिलाना मुस्कान और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। इन बातों के लिए भी उन्हें कई बार अलग अलग लिस्ट में टॉप पे रखा जाता रहा है।

ये तो मानना ही होगा कि शिल्पा के एक्टिंग और किरदारों से ज्यादा उनके फिटनेस, ध्यान और योग की बातें चर्चा में रहती हैं। उनका मानना है कि योग और ध्यान के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिल्पा शेट्टी का मूल मंत्र ही फिटनेस है और ये बात उनकी दिनचर्या का भी हिस्सा है। पॉजिटिविटी, परिवार का साथ, योग, ध्यान, संस्कृति से जुड़ाव, जीवन को सरल रखना जैसे कई ऐसे गुण शिल्पा शेट्टी में नजर आते हैं जो उनके फैंस भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ये बातें उन्हें एक रोल मॉडल तो बनाती ही है, साथ ही लोग खुद को उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। शिल्पा इसी तरह सरल और सहज बनी रहें और आने वाले कई दशकों तक लोगों को फिटनेस और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती रहें। हमारी यही

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

93.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

नाइन एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे शंकर माधवन की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी खुद शंकर माधवन ने। रसरंग कार्यक्रम में श्रोता दोस्तों, अब आइए सुनते हैं अब के बरस एल्बम से एक गीत। सुनीता राव की आवाज़ है, श्याम अनुरागी हैं गीतकार और संगीतकार हैं असद राज आनंद। लेकिन इससे पहले सुनिए कुछ संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अब हम आपको सुनवाएं अबीदा परवीन की आवाज़ में अबीदा एल्बम का एक गीत। अमीर खुसरो के लिखे इस गीत को धुन बनाई है अबीदा परवीन ने।

अबिदा प्रवीण के गाए इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। रसरंग कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। समय मिलाइए, रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

रात की तन्हाइयों में जब खत तेरा पढ़ता हूँ, हर एक लफ्ज में अपना मुकद्दर ढूंढता हूँ, चांद भी ठहर जाता है मेरी खिड़की के पास, तेरी यादों के सहारे मैं रात भर जगता हूँ। खत में लिखी बातें आज भी महकती हैं, बीती हुई मुलाकातें दिल में चहकती हैं, रात की खामोशी में जब याद तुम्हारी आती है, हर धड़कन तेरे नाम की गजल सुनाती है।

रात ने ओढ़ ली है चांदनी की चादर, मैंने खोल लिया है तेरा पुराना खत अक्सर। कुछ आंसू कुछ मुस्कानें उसमें आज भी रहती है, तेरी यादें हर तरफ मुझसे बातें करती हैं।

बेखुदी में तेरी यादों का सहारा मिल गया, बेखुदी में तेरी यादों का सहारा मिल गया, सूने दिल को जैसे जीने का इशारा मिल गया। खो गए थे हम तेरी चाहत के सफर में इस कदर, खुद को ढूंढा तो तेरा ही नजारा मिल गया। दोस्तों, बेखुदी का आलम कुछ ऐसा छा गया, तेरा नाम लबों पर खुद बखुद आ गया। सोचा था भूल जाएंगे तुझे एक दिन, मगर हर ख्वाब में तेरा चेहरा ही नजर आ गया।

और अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं जंजीर फिल्म का एक गीत। लेकिन ये गीत हम आप तक पहुंचाएं इससे पहले हम चाहते हैं कुछ बातें करना आपकी इजाजत से आपके साथ। दीवानगी की हद तो देखो मेरी मोहब्बत की, दीवानगी की हद तो देखो मेरी मोहब्बत की, तेरा नाम सुनते ही मुस्कुराना आदत बन गई, लोग कहते हैं मुझे दीवाना तेरे प्यार में, और मुझे अपनी ये दीवानगी इबादत बन गई। दीवाना हूँ मैं तेरी यादों का इस कदर, हर पल तेरा ही चेहरा नजर आता है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे मेरे बारे में, मुझे तो बस बस तुझसे प्यार निभाना आता है।

हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अख्तर रोमानी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।

दीवानगी का आलम कुछ यूं छाया है, तेरे बिना हर मौसम पराया है। तू मिले तो जिंदगी गुलशन बन जाए, वरना हर खुशी ने मुझसे मुंह छुपाया है। दोस्तों क्या क्या कहें, बहुत कुछ कहने का जी चाहता है, लेकिन बस जो अब कहना चाहते हैं असल में हम आपसे, उसे तरन्नुम में आप तक पहुंचा रहे हैं। लीजिए, सुनिए और समझिए।

जंजीर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।

तेरी जुल्फों की छांव में सुकून मिलता है, तेरी मोहब्बत में ही मेरा जुनून मिलता है। जब भी बिखरती है तेरी जुल्फें हवाओं में, मुझे हर तरफ बस तेरा ही नूर मिलता है। तेरी जुल्फों का जादू कुछ ऐसा चल गया, दिल मेरा मोहब्बत के दरिया में बह गया। एक नज़र तो तुमने मुस्कुरा कर देख लिया, मेरा हर ख्वाब तेरे नाम से सज गया। और अंत में, काली घटाओं से तेरी जुल्फें लहराती है, मेरे दिल में मोहब्बत की शमा जलाती हैं। तू पास हो या दूर ऐ मेरी जान, तेरी यादें हर पल मुझे गले लगाती हैं।

दो रास्ते फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और अब इसी के साथ हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट तराने यहीं संपन्न हुआ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त इसी मीटर बैंड पर। तब तक के लिए नमस्ते।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल सुबह आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर होंगे सुबह 5:53 पर। सुबह 7:30 पर सुनेंगे आप प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। समाचार प्रभात हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00। 8:15 पर सुनिए देशभक्ति संगीत। आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पसंद आपकी आप सुन सकते हैं कल सुबह 8:20 पर। कल 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किया जाएगा। गीत मालिका आप सुनेंगे कल सुबह 9:10 पर हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में और तब आप सुनेंगे विविध भारती का प्रसारण। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे पूर्वाह्न 10:05 पर वापिस आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से। कल हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम आवाज। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी की प्रस्तुति होगी पूर्वाह्न 10:30 पर। पूर्वाह्न 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार। पूर्वाह्न 11:00 हम और आप शामिल होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में और तब आप सुनेंगे विविध भारती का कार्यक्रम। वापिस स्टूडियो

0: आकाशवाणी सासाराम से शाम 5:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर सुनिए युवा दोस्तों के लिए हमारा कार्यक्रम युवावाणी। भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:00। शाम 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से हम रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से शाम 6:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत की प्रस्तुति होगी कल शाम 6:40 पर। गुड इवनिंग रोहता सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम रोज की तरह कल भी आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किया जाएगा शाम 7:25 पर। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से ई मनपसंद ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे शाम 7:50 पर। समाचार संध्या हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा की प्रस्तुति होगी रात्रि 9:15 पर सुनिए गजल का प्रोग्राम महफिल। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। चित्रपट तराने हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप कल भी सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। और हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग की प्रस्तुति होगी रात्रि 10:00 कल भी। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
3: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे,

0: लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं, और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।